FM 밴딕스 에크티쇼 흑딩메가 아가쇼의 2026 मिनट होने को है। अब हमारी आज की प्रातकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं

0: स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इंपैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉ जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन, विषय है बचपन। सुबह का उगता सूरज नई रोशनी और नया विश्वास लाता है। सुबह की लालिमा और शीतलता उसके स्वरूप को निखार देती है। बचपन का समय भी वही शीतलता और मासूमियत लिए होता है। यदि उस समय उसे सही दिशा दी जाए तो बचपन रूपी उगता सूरज जीवन में उन्नति की सुबह लेकर आएगा। बचपन

जब बच्चा किसी खिलते हुए फूल की तरह नाजुक, कुमाचे भरते किसी हिरण की तरह अलहड़, कई कई बहते झरनों सा निर्मल और पंछी की तरह आकाश छूने के लिए लालायित सा होता है। ऐसे बचपन को प्रेम, ममत्व और सही दिशा निर्देश के साथ उत्साहित कर आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है। बच्चा जितना सीखने के लिए उत्साहित होता है, उसका मन उतना ही नई नई चीजों और सवालों को जानने के लिए बेचैन भी होता है। उसके मन में सब जानने की चेष्टा और हर कार्य स्वयं कर लेने की इच्छा ही उसे आगे बढ़ने और मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। बाल्यकाल एक ऐसा समय होता है जब सपने कोरी आंखों में झांकना शुरू करते हैं। बारिश में भीगते हुए कपड़े गीले हो जाने के भय में नहीं, बल्कि आकाश में बनते इंद्रधनुष, कागज की नाव और पेड़ पर भीगती चिड़िया में अधिक मगन होते हैं। कल्पनाशीलता अपने चरम पर होती है। ऐसे में बच्चों को डांटकर या उनके प्रश्नों को न सुनकर हम उनके विकास को ही नहीं बल्कि उनके सपनों को भी नोचकर फेंक देते हैं। बच्चों के मन की भावनाओं को समझें, उनका सम्मान करें और उनके फैलते पंखों को प्रेम का आकाश देकर उनकी उड़ान को बढ़ने दें।

0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए अब सुनिए वंदना।

0: इस देशभक्ति गीत के साथ ही वंदना कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम चिंतन और वंदना एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। आज का एपिसोड 195।

कस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषादराज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव ना होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषादराज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषादराज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे

आप सुन रहे थे रामचरित मानसकान। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी देंगे आज के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:45 पर खेतीनी बात, 6:50 पर आदिवासी लोक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे उदयसिंह डामोर की आवाज में आदिवासी लोकगीत, प्रातः 7:20 पर वातायन, वातायन में आज आप सुनेंगे कहानी आभासी दुनिया, कहानीकार हैं डॉक्टर नीरज पंड्या। प्रातः 7:30 पर विविध भारतीय कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, प्रातः 8:00 रोजाना की तरह दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, प्रातः 8:15 का समय उद्घोषक के अपने कार्यक्रम कुछ दिल से, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर विषय रहेगा शांति।

प्रातः 8:45 पर राजस्थानी लोक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे गार्गी बनर्जी की आवाज में मीरा के भजन। प्रातः 9:00 हिंदी में समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। 9:10 पर सुगम संगीत। प्रातः 9:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10:00 सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

प्रातः 11 बजे सुगम संगीत, 11:30 पर फिल्म संगीत, दोपहर 12 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

ये तो थी जानकारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों की। अब एक नजर सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, 5:30 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम, शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर केंद्र से, 6:45 पर जयपुर केंद्र से ही राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7:00 किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम चौपाल, शाम 7:30 पर जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, रात 9:00 विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, रात 11:00 हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: पानी या ओस में बूंदे रहे ने आ चारो जो खाली पेट पशु ऊपर खाई जाएगा तो कई वेरा ने आफरा ने बीमारी भी थी जाए एटले पशुओं ने धूप निकलवाने बाद चरावान वास्ते निकलव जुए बानना मोकलवा की पहले इनने थोड़ो सो हरो चारो खवाड़ देव जुए नवी घास ने हाथे हाथे घना का परजीवी पशु ने पेट में सला जाए किसान भाई हाँ अपने ने अपने देखा के पशु जो है ये चारो तो खूब खाई रहे पर कमजोर था तो जी रहे ने दूध जो है ये भी घटी रहे तो आना मौसम में डॉक्टर ने सलाह थी कि पेट में कीड़ा मरवानी दवा जरूर आवी जोईए अब बरसात में जो मौसम है अड़े गलगोटू मुंह पका खुर पका जीवी बीमारी है ने इनमें थकी बचावाने वास्ते पशुओं टीकाकरण करवानो जोईए बारिश में गोबर ने पानी फर्श में माते अगर होगा तो फर्श बहुत चिकनू थी जाए ने आवाने में जो भारी भरकम गाय है भेड़ है इनमें फिसलवाने में थकी हड्डी टूटी सके या पसे गाभिन पशु है तो इन्हें बच्चा ने नुकसान थी सके फर्श ने माते अपने ने सूखी बालू रेत नाखी सको ने फर्श अगर पक्को है तो इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी माते हल्की धारिये बढ़वाना ताकि इनका जो खूर है इनकी पकड़ जो है ये बनी हुई रहे बरसात में मैं पशु जेरा गोबर या कीचड़ में बे तो गंदगी थन में माते लागी जाए आ गंदगी थकी बैक्टेरिया थन में मई जाई ने इन तकी थनेला रोग कर दे जिन तकी थन हमेशा ने वास्ते खराब थी सके दूध निकालवा तकी पहले थन माते लाल दवा एटले पोटेशियम परमैंगनेट तकी अपने ने इन्हें लगाड़ी ने इन्हें पानी थकी धोई लेव जुए ने साफ कपड़ा थकी सूखा भी लेव जुए ने इन्हें बाद अपने दूध निकालव जुए तो किसान भाइयों आवी रीते अपने पशुओं ने बचाई सक ने आना मौसम में अपने ने इन ध्यान रखव जुए किसान भाई टेम पूरा थी गये शंकर भाई ने आलो इजाजत ए आवजू राम राम राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती नी बात आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है प्रस्तुत है आदिवासी लोक संगीत।
2: अनकर युग भयो करू अर्ज करूं यजमाल राम तुम्हारो हेलो सुनो ने हजू।
1: आदिवासी लोक संगीत में आज आप सुनेंगे उदयसिंह डामोर की आवाज में भजन।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट अब 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: आई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: आप सुन रहे थे उदय सिंह डामोर की आवाज में आदिवासी लोक संगीत, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर नीरज पन्यासी कहानी आवासीय दुनिया।
1: समय पर ये कोई काम नहीं आने वाले हैं। अपनी आभासी दुनिया से बाहर निकलो। सुबह से मोबाइल लेकर बैठे हो, बस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ही अपनी दुनिया है। जरा अपनी दुनिया से बाहर निकलकर तो देखो यहां कितना काम है। एक और बच्चे का टिफिन बनाना, स्कूल के लिए तैयार करना, अब उसे बस स्टॉप तक छोड़ने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। ये तो कर सकते हो ना, मोना ने गुस्से भरे लहजे में केतन को कह दिया। इधर केतन देर रात तक दोस्तों के साथ मोबाइल में सोशल मीडिया पर चैटिंग और बधाइयां देने में लगा रहता था, इसलिए सुबह देर से उठ पाता था। फिर सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ना भी उसकी आदत में आ गया था। मोना पढ़ी लिखी तो थी पर फिलहाल कोई जॉब नहीं करती थी। उसका मानना था कि बच्चे का स्कूली एजुकेशन पूरा हो जाए तब वो जॉब कर लेगी। इस बहाने बच्चे की, केतन और घर की अच्छी तरह से संभाल हो सकेगी। एक दिन अचानक केतन के घर से उसकी मां का फोन आया। केतन ऑफिस के लिए निकल चुका था और फोन मोना ने ही उठाया था। फोन पर केतन की मां ने अपनी बहू मोना को बताया कि उसके ससुर की तबीयत अचानक कल रात को खराब हो गई थी। उन्हें सीने में तेज दर्द उठा था और रात को ही शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। घर में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए पड़ोसियों की मदद से

उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। ऐसे में उनके साथ पास में रहना जरूरी है। मोना ने तुरंत ही केतन को फोन पर इस घटना की जानकारी दी। केतन तुरंत ही एक सप्ताह की छुट्टी लेकर मोना के साथ अपने घर के लिए मां के पास रवाना हो गया, ताकि हॉस्पिटल में मां के साथ बाबूजी की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। केतन मोना को लेकर अपनी कार से निकला ही था और करीब 10 किलोमीटर आगे एक मोड़ पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार ट्रक से टकराकर करीब 2-3 पलटियां खाती हुई एक खाई में गिर गई। हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। मौके पर भीड़ ने पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। रास्ते में ही मोना को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तेजी से खून बह रहा था। एम्बुलेंस स्टाफ ने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की और तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन होने को कुछ और ही होना था। हॉस्पिटल पहुंचते ही मोना की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मोना की मौत का कारण अत्यधिक खून बह जाने का माना। केतन को तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट किया गया। केतन की जान तो बच गई, लेकिन हाथ, पैर और पसलियों की हड्डी टूटने से करीब 3 सप्ताह हॉस्पिटल में ही भर्ती रहने की सलाह दी गई। इधर केतन को मोना की मौत की खबर से दूर रखा गया। केवल इतना ही बताया कि उसे ब्रेन की जटिल सर्जरी के लिए आगे ले जाया गया है। सूचना मिलते ही केतन के ऑफिस के सहकर्मी भी आ गए थे। उधर बाबूजी के हालात में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने अधिक उम्र का हवाला देते हुए ऑपरेशन को टालने की बात कही, लेकिन उनके दूसरे प्रयास भी सफल नहीं रहे। देर रात 3 बजे बाबूजी को हृदय का दौरा पड़ा और वे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। इस घटना का रिश्तेदारों को जब पता चला तो मानो एक वज्रपात सा हो गया। किसी तरह केतन की मां को संभाला और उन्हें केतन की कार की दुर्घटना और मोना की मौत की खबर दी गई। अब सारी रस्में पूरी हुई। उधर केतन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी। उसे सारी घटना से अवगत कराया गया, मानो अब उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। समय बीतता गया। केतन अपना पुश्तैनी घर और जायदाद बेचकर अपनी मां को अपने साथ शहर ले आया। उधर उसका बेटा भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसका प्लेसमेंट भी एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में हो चुका था और अब वो विदेश चला गया। केतन की दुनिया में अब वो और उसकी बूढ़ी मां दो ही रह गए थे। बस बेटे से सप्ताह में एक बार वीडियो कॉल से बात हो जाया करती थी। लाख कोशिशों के बाद भी केतन कभी भी दूसरी शादी के लिए नहीं माना था। आज रविवार था। मां का हॉस्पिटल में चेकअप कराने का तयशुदा अपॉइंटमेंट। मां बिस्तर में ही रहती थी, यहां तक कि उनके अपने निजी कामों में भी केतन को ही मदद करनी पड़ती थी। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठकर खुद के और मां के निजी कामों में मदद कर अधिकांश समय बीत जाता था। हां, थोड़ा समय जब भी मिल जाता तो वो अपने घर की बालकोनी में बैठकर मन में उठे जज्बातों को कागज पर लिखने की कोशिश करता। आज फिर उसके पास एक कागज और कलम थी। मन अतीत की गहराइयों में चला गया। उसे रह रहकर अपनी पत्नी मोना की वो आभासी दुनिया वाली बातें याद आ रही थी। अब न तो वो कोई मित्र पास है और न ही कोई संबंधी। अब उसे अपने बीते दौर के हजारों फेसबुक फ्रेंड और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स याद आ रहे थे, जिन्हें आज तक न तो कभी उसने देखा और न ही जाना था। वो सोचता रहा, न जाने कौन थे ये लोग जिन्हें न कभी देखा न जाना, फिर भी उनसे प्यार हो गया। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्हें दोस्त बनाया। ये कैसा प्यार जो केवल एक आभासी है। उनके लिए रोजाना जन्मदिन की, शादी की शुभकामनाएं देने में घंटों बीतते थे। कई बार उन लोगों के इवेंट वीडियो देखकर समय व्यतीत होता था। आज न तो उन दोस्तों के कॉमेंट्स आ रहे हैं न ही फॉलोअर्स के। कहां गए ये सब? तभी अंदर से आवाज

आ जाए, शायद मां को पानी पीना है। वो अंदर गया और मां को पानी पिलाया। आज केतन अपनी आभासी दुनिया से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। वो गाड़ी आ चुकी थी जिसमें मां को हॉस्पिटल ले जाना था। अब उसने अपने ही हाथों से मां को उठाकर गाड़ी में रखा। आज मां का हॉस्पिटल में चेकअप था। मां को हॉस्पिटल में केतन ने भर्ती कराया। हॉस्पिटल स्टाफ ने उनकी सभी जरूरी जांचें कराई। वो स्ट्रेचर के पीछे पीछे एक कमरे से दूसरे कमरे चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर कभी खून की जांच की रिपोर्ट तो कभी एक्सरे रिपोर्ट लाने का कह रहे थे। केतन आज बुरी तरह से थक चुका था।

0: केतन आज बुरी तरह से थक चुका था। सुबह से ही इस भागदौड़ में खाने का समय ही नहीं मिला। मां को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। अब तक सारी जरूरी जांचों की रिपोर्ट आ चुकी थी। केतन मां को चम्मच से दवा पिला ही रहा था कि एक हॉस्पिटल कर्मी उसे बुलाने आया। कहा कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वो डॉक्टर के चैम्बर में घबराया हुआ गया। डॉक्टर ने उसे अपने पास बैठाकर केतन को समझाया, देखो आपकी मां के सारे वाइटल ऑर्गन्स सही तरह से काम कर रहे हैं, इन्हें स्पाइन से जुड़ी तकलीफ है जिसका संबंध दिमाग से है। इस उम्र में इनके लिए जटिल सर्जरी जोखिम भरी हो सकती है और हम जोखिम लेना नहीं चाहते। आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी मां को घर ले जाएं और उम्र भर सेवा करें। केतन निराश हुआ, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इतने में केतन के किसी सहकर्मियों को इस बात की खबर मिली, वे हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे जैसे पड़ोसियों और रिश्तेदारों को इस बात का पता चला तो वे भी चिंतित होकर केतन से फोन पर हालचाल जानने लगे। केतन के मां की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की कार्रवाई पूरी हुई। वो मां को लेकर वापस अपने घर आ चुका था। कई नजदीकी रिश्तेदार आने लगे थे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने ढांढस बंधाया और सारी जरूरी मदद भी की। अब केतन की दिनचर्या बदल चुकी थी। दोस्त वो ही थे जो उसके सामने रहते थे। सोशल मीडिया को अब पूरी तरह से समझ चुका था, या यूं कहें कि वो अब आभासी दुनिया से कोसों दूर जा चुका था।
1: अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत कहानी आभासी दुनिया। कहानीकार थे डॉक्टर नीरज पंड्या। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। शाम प्रातः के 7:30 होने को है। लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
2: चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, ये थोड़ी ही देर में लेकर हम

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम हम है राही प्यार के लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तपस्या से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। एमजी हशमत का लिखा गीत, धुन बनाई है रविन्द्र जैन।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तकदीर से। उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा टिमोथी की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के कार्यक्रम पिया का घर। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पसंद हूँ, क्या तुम रजामंद हो? मैं तो रजामंद हूँ, बोलो।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम हम है राही प्यार के। गीत गाता चल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओ, ओ, ओ।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: 1 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चित्रचोर का गीत येशुदास और हिमलता की आवाजों में। संगीतकार और गीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे येशुदास, हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजों में। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन थे। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हिराही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंडमास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है।

0: दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाली का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
5: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
4: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
6: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
4: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों

0: और भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बिंदु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने

0: दो रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रूपये तक का मिलेगा बीमा, हिन्दुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है उत्कर्षक का अपना कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार। कार्यक्रम कुछ देर से लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त प्रेरणा उपाध्याय। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जी हां 21 सितंबर, और आज हम कार्यक्रम कुछ देर से में बात करेंगे शांति की। दोस्तों, आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की है। जी हाँ, शांति की। शांति जो केवल युद्ध की अनुपस्थिति का नाम नहीं, शांति तो उस एहसास का नाम है जहां मन में किसी के लिए नफरत ना हो, जहां शब्द किसी का दिल ना दुखाए, जहां धर्म, भाषा, जाति और सीमाओं से ऊपर उठकर इंसान को इंसान समझे। जी हाँ, तो चलिए आज हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं सब मिलकर कि नफरत की दीवारें घिरे, मोहब्बत के दीप जले, हर दिल में इंसानियत हो तो दुनिया में शांति के फूल खिले।

दोस्तों शांति, हम इसके लिए विश्व की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा कि बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो, अगर मन शांत है तो सब कुछ अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों ओर सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन के भीतर एक शोर चलता रहता है। शायद इसलिए शांति सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, मन के भीतर के लिए भी जरूरी है। दोस्तों ये अक्सर हम युद्ध और संघर्ष के संदर्भ में ही सोचते हैं, लेकिन इसका दायरा इससे भी कहीं अधिक है। हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे। एक छोटे से घर में एक पिता और उसका बेटा रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों का स्वभाव थोड़ा अलग था। पिता चाहते थे कि बेटा हर काम समय पर करे, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग होने की खातिर बेटा चाहता था कि पिता उसे थोड़ा और समझे और समय दे। एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। पिता गुस्से में कठोर शब्द कह दिए। बेटा चुपचाप वहां से चला गया अपने कमरे में और दरवाजा बंद कर दिया। रात को पिता दरवाजे के बाहर गए, देखा कि दरवाजा बंद था। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर दरवाजे पर खड़े रहकर बेटे को पुकारा। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पिता ने कहा कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने कहा तो सही था लेकिन मेरा कहने का तरीका कुछ अलग था। कुछ पिता वहीं खड़े रहे, फिर दरवाजा खोला और बेटा बाहर आया। उसने पिता की तरफ देखा और बस इतना ही कहा, पापा मुझे भी माफ कर दीजिए। दोस्तों इससे समस्या हल नहीं हुई, लेकिन एक छोटी सी चीज लौट आई, वो है शांति। जी हाँ, दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक शांत शब्द, एक सच्ची मुस्कान और मदद के लिए बड़ा हुआ एक हाथ भी काफी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही कुछ प्यार भरा ये नगमा।

0: जी हाँ दोस्तों, हम सभी यही चाहते हैं कि आपस में प्यार से सुकून से रहे। दोस्तों हम बात आगे भी करेंगे, लेकिन इसके पहले कार्यक्रम कुछ दिल से में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर

0: कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा प्ले

0: आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फिट ब्रेक का इंतजार। नमस्कार।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम कुछ दिन से में। दोस्तों, बात करते हैं शांति की। विश्व में शांति, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं हमसे ही, हमारे घर से ही। हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, हर मुश्किल का सामना मिलजुल कर करते हुए, क्योंकि जब साथ होता है तो रास्ते भी आसान हो जाते हैं, और जब शांति सुकून होता है तो मंजिलें और भी बहुत खूबसूरत लगने लगती हैं। तो दोस्तों, आइए हाथ से हाथ मिलाएं, दिल से दिल जोड़े, और जब एक ऐसे समाज की ओर आगे बढ़ेंगे जहां सबका साथ हो, सबका विश्वास रहेगा, और कदम कदम पर शांति बनी रहेगी, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी, और हमारी पहचान भी यही रहेगी, और हम संदेश भी यही देते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना।

0: अपने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: दोस्तों, नीला का कान खुली हुई धरती, हवा में खुली ताजगी और चारों ओर बिखरी प्रकृति की खूबसूरती, कितना खूबसूरत हो। अगर इसी धरती पर हर इंसान के दिल में भी इतनी ही शांति रहे, इतना ही सुकून हो, न कोई नफरत, न कोई वैर, न किसी को किसी से डर हो, बस प्रेम हो, विश्वास हो और एक दूसरे के लिए सम्मान हो। आज यही संदेश देते हैं कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक वातावरण है जहां इंसान खुलकर मुस्कुरा सके, जहां रिश्तों में अपनापन हो, जहां धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। जरा कल्पना कीजिए,

दोस्तों, सुर अलग हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिलों में प्यार बना रहे। रास्ते अलग हो तो कोई बात नहीं, मंजिल पर शांति का संसार बना रहे। आप जहां भी रहे, प्रेम बांटते रहे, शांति फैलाते रहे और इंसानियत का सुर मिलाते रहिए। इसी के साथ आपके दोस्त प्रेरणा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे उद्घोषक का अपना कार्यक्रम कार्यक्रम कुछ दिल से आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। दोस्तों राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं गार्गी बनारसी की आवाज में मीरा के भजन।

0: कि भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में?
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अभी आप सुन रहे थे कारगिल बनर्से की आवाज में राजस्थानी लोकगीत। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। प्रातः के 9 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आज से जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। और खेजड़ली बलिदान दिवस आज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खेजड़ली के लिए बलिदान को प्रकृति संरक्षण की भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। सुबह 10 बजे से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। आज उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगमों के लिए महापौर चुने जाएंगे। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कानून व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी और पुलिस आयुक्तों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उधर भीलवाड़ा और भरतपुर नगर निगमों में महापौर का निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुने गए हैं। वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर तथा सुकेत नगर पालिका के सभापति के लिए 25 सितंबर

उपचुनाव होगा। इन क्षेत्रों में कुछ केंद्रों पर पुनर्मतदान के चलते चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी की दो दिवसीय बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। कमेटी के सभी सदस्य जयपुर पहुंच चुके हैं। समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल कल जयपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजना, सौर ऊर्जा और सामाजिक न्याय से संबंधित विषय शामिल है। श्री वेणुगोपाल ने बताया कि सामाजिक न्याय से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जा चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद बस्ती के टहटड़ा गांव में आयोजित वीर तेजाजी मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर वे मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद महाराजा जवाहर सिंह जाट छात्रावास में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स की चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ताकेहिरो मोरिता ने कहा है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भारत की तकनीकी क्षमता और मेक इन इंडिया पहल का प्रतीक है। उन्होंने ये बात जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तेजस में उड़ान भरने की बात कही। जनरल मोरिता ने तेजस में उड़ान को शानदार अनुभव बताया और भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण माहौल तथा दोनों देशों के संयुक्त अभ्यास के महत्व की सराहना। गौरतलब है कि भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने कल जोधपुर से तेजस में उड़ान भरी। जोधपुर में 9 सितंबर से भारत जापान द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2026 चल रहा है। कल तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के तेजस, सुखोई 30 एमकीआई और राफेल तथा जापान के F-2A विमान हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पेयजल और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में जलदाय और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर जल आपूर्ति से संबंधित आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय रखा जाए। बैठक में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल, किशाऊ और परवन परियोजनाओं सहित विभिन्न जल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर दौसा और ईसरदा दौसा जंगवा रामगढ़ पाइपलाइन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर आज प्रदेश भर में लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज के मेलों की धूम है। जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहे 9 दिवसीय वार्षिक मेले का आज अंतिम दिन है। मेले में राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज महाआरती के साथ मेले का समापन होगा। उधर नागौर जिले के खरनाल में तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर 2 दिवसीय वार्षिक मेला कल शाम आरती के साथ शुरू हुआ। मुख्य मेला आज भर रहा है। मेले में विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खरनाल पहुंचकर वीर तेजाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कल रात जागरण का आयोजन किया गया जिसमें कलाकारों ने तेजा गायन और भजनों की प्रस्तुतियां दी।

0: मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज खेजड़ली बलिदान दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण और खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बलिदानियों को याद किया जा रहा है। जोधपुर के निकट खेजड़ली गांव में 18वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। खेजड़ली की इस घटना को चिपको आंदोलन के संदर्भ में भी याद किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खेजड़ली बलिदान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि खेजड़ली का बलिदान प्रकृति संरक्षण की भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही मौसम साफ होने लगा है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कल कई शहरों के अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। जैसलमेर 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा। वहीं बारा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सीमा पर एंटी साइक्लोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे वातावरण में नमी कम हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी जिलों के अन्य स्थानों से मॉनसून विदा होने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।
1: पिछले 2 दिनों से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी रिपोर्ट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ और भागों से मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अगले 2-3 दिनों में अनुकूल है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 25-26 सितम्बर को कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना बनी हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आज से जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए और खेजड़ली बलिदान दिवस आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खेजड़ली के लिए बलिदान को प्रकृति संरक्षण की भारतीय परंपरा का अनुपम उदाहरण बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं अशोक खोसला की आवाज में गाए कुछ चुनिंदा गजलें।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देख।

0: है कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर

0: शिकायत दर्ज करें।
1: हेलो,
2: हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co

0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: अभी आप सुन रहे थे अशोक खोसला की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
0: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गाँव से हुई थी।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
0: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
2: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी।

0: आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए

0: अमरीका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
1: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
0: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ताहाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
1: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
0: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
1: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
0: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
1: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: अरे लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा मैंने कहा।
2: अरे सुनो। उफ माँ।
3: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ।

0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
2: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो।
3: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
2: कुछ कर सकते भाई, क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
3: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
2: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो। लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला।
3: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
2: बेटा

0: मैं जलती लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
1: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
0: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
1: लेकिन क्या बेटा,
0: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ, दे दो ना माँ, दे दो।
1: अरे बेटा सुनो तो
0: माँ, एक लालटेन दे दो।
1: देखो बेटा इससे कुछ नहीं होगा, और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
0: अरे माँ लालटेन दे दो।
1: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है, करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
3: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
4: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
3: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
0: माँ माँ माँ,
1: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर, मैं तो सारी रात जागता रहा।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
1: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
1: हाँ ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ,
1: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी, बहुत अच्छा।
3: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
4: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
3: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
4: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
3: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
4: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
3: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
4: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहाँ दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतनी तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम? वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस

0: पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
1: भैया टिल्लू खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
0: मट्टू बोले,
2: हाँ हाँ जरूर।
0: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
2: देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
0: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
3: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
0: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
2: हाय ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
4: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
4: ध्यान देना।
0: रक्कास,
4: नाचने वाला।
0: ताब,
4: ताकत बर्दाश्त।
0: हिंसा,
4: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
4: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी।
4: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था।
4: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे।
5: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु चेतना अर्षद कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: Viva.
1: ये है विविध भारती उजाले।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस और फिर संजय।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
1: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो, तो यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
1: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
1: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
1: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया, तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी, माताजी, हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
0: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
1: हाँ,
0: और दौलत को ठुकराया।
1: हाँ, दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो, और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए? क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे

0: सितार सीखने।
1: अच्छा, ये लखनऊ की बात
0: है। ये लखनऊ की बात है और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब
1: जी,
0: आपने नाम शायद सुना होगा
1: जी।
0: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं, तो वो चीज मुझ में भी आई। और मुझ में डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की मैं वो गाता था
1: बाबा।
0: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे
1: जी,
0: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरे को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी, बच्चे को कहां पता चलता। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का, तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
1: एक झटके में हवेली से बाहर,
0: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद डेढ़ दो महीना रहे, उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया मुझे याद नहीं, बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया,
0: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया
1: जी जी,
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया
1: जी,
0: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है गाना होता है थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा,
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम वो कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे। और इससे शहरों में आप रहे उस दौरान,
0: याद नहीं लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए,
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए जिस उम्र में बच्चों को खेलना पहनना खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था,
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था,
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे थे,
0: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे, डांट मार वाला मामला था
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे, वो टीचर बहुत अच्छे थे, हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे बट टीचर तो कमाल थे
1: जी,
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है उससे भी वो तबला बजवा देंगे,
1: वाह क्या बात है,
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ,
1: अच्छा
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता, मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है वो मैं करवा लूंगा,
1: वो तो मैंने देखा है,
0: लेकिन हाँ लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, टीचर इज अ डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा, हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर। तो जी वहां से जो जर्नी शुरू हुई है

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ रायपुर, फिर अहमदाबाद,
1: गुजरात पहुंच गए।

0: गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
1: जी,
0: कि बॉम्बे पहुंचना है।
1: उसके पीछे इरादा क्या था?
0: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना।
1: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
0: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वाला भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में

0: तो ज्ञानी, जैसे आज बीए या एमए है तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, वृतपाल सिंह ज्ञानी।
1: अच्छा।
0: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर।
1: जी जी।
0: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
1: अच्छा।
0: आज जो पाकिस्तान में है।
1: हाँ।
0: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे। तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे पार्टी।
1: जी जी जी।
0: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
1: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप।
0: जी, डैडी तो पहले आके गए थे मुंबई।
1: जी।
0: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपना, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे।
1: जी।
0: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 या 2 साल सीखा हूँ।
1: क्या बात है।
0: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है।
1: जी।
0: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया, वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊं।
1: वो कहानी में आगे आएगा।
0: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुए।
1: बाप रे, 10-12 घर
0: 2 साल में।
1: जी।
0: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंदर गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, मडुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही।
1: जी।
0: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
1: बाप रे बाप।
0: ये लोग सुन के बहुत हैरान हो गए।
1: 13.5 घंटे।
0: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
1: ओहो।
0: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
1: अरे बाप रे।
0: 4:30-5 बजे।
1: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेले?
0: नहीं,
1: बच्चों के साथ खेले
0: कभी हुआ ही नहीं। कोई यही जिंदगी थी, डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
1: बस उसके आगे
0: माँ ने कहा है खत्म होगी बात।
1: जी।
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने उनको करना ही है।
1: कितनी सुंदर बात है।
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।

0: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते हैं, उनके फादर।
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन। हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते हैं ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा।
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी, बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था
1: जी। जी
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए।
1: हाँ।
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं, वो भी मोहम्मद शफी के साथ।
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है, बड़ा रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा।

0: उसके लिए था वो।
1: तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ।
0: तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग।
2: जी
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
2: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब जाके हम लोग हॉल में बैठ गए। अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए।
2: जी
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर
2: आजा आजा।
0: उनका नाम पीटर था, बहुत बड़े वायरलिस्ट थे,
2: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
0: बहुत बड़ी हस्ती।
2: जी
0: तो उन्होंने आया, पीटर आजा आजा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायरलिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने उस बजाई
2: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गया या 9 हो गया, 8 हो गया, जो भी था याद नहीं। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटिशन ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तो मेरे से फट से आया, तुम बजाओ तुम। और मैं नहीं बजा सका उससे,
2: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं मुझे हुआ क्या, शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है यहाँ, पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे प्रैक्टिस करते रहे। उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी
2: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
2: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
2: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी
0: 10 रुपए पूरे दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए। तो 10 रुपए देख के ही हम सब ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
2: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूँ ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे,
2: ओ
0: शर्ट फटी होगी
2: जी जी जी जी।
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात,
2: इतनी बड़ी रकम,
0: इतनी बड़ी रकम कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो मम्मी को 10 रुपए दिए, पहले पैसे दिए, गायगुरु जी को मत्था टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है
2: 12 बरस की उम्र में,
0: नहीं 14 वर्ष हो गया,
2: अच्छा
0: 62
2: जी जी
0: 14 बरस
2: जी।
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे अगले, चलो उठो चलो चलते, कहा चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए, दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी,
2: गजब,
0: 2 मेरे लिए एक अपने लिए, और मुझे लगता है शायद हमने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट,
2: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं डैडी को लेके गया, बोले इसको लड़के को आप बाबा जी क्या रामप्रसाद जी क्या डालो,
2: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के, प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के
2: ट्रम्पेट बजाया करते थे,
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे, और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे, और इतने जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस किया और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है, हमने
2: जी, कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे,
0: बाबा जी बोलते। मैं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
2: जी,
0: ये बाबा जी थे हमारे,
2: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने,
0: महत्वपूर्ण शिष्य था। और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ,
2: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
2: आपके लिए नहीं,
0: मेरे लिए।
2: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे,
0: लाडला बच्चा भी कहते थे, और मुझे राम सिंह कहते थे,
2: अच्छा
0: ये कहते ये मेरा राम सिंह है,
2: वाह वाह वाह वाह,
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था,
1: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे, इंडस्ट्री में

0: सैक्सोफोन ऑब्लिगेटो में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशन
0: लिख रहे हैं,
1: गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म हुआ, वो उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: थी, जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना, जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह,
0: तो सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा,
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसवानी।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और पहले भी वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूँ।
1: अरे वाह,
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पर किसी को दिया नहीं जाता, आमतौर पर किसी को भी ये चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
1: अरे बाप रे, और आपकी इतनी कम उम्र।
0: ये शायद 63-64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
1: जी जी, शेख मुख्तार,
0: उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह,
0: 6 फुट के थे,
1: हट्टे कट्टे,
0: उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड ये चाचा कर रहे थे, वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा हमने। 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ,
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: बाप, 15-16 साल की उम्र,
1: कमाल।
0: वहां से कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा नौशाद साहब का
1: जी,
0: तो हम सब बजा रहे थे, मैं सब 3rd रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था, तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह,
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
1: कौन सी फिल्म है
0: वो, मुझे याद थी। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म नहीं हुआ करती थी
1: जी जी जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग
1: अच्छा।
0: पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता,
0: ऐसा नहीं होता था।
1: गजब, तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया,
0: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह,
0: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया, मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम,
1: क्या बात है,
0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे।
1: वाह,
0: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
1: गजब गजब, क्या बात है,
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तो ने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं, ओहो,
0: ये 64 की बात
1: जी। अब
0: फील ही फील है।
1: ये कहां से आया,
0: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है। पहला सोलो था
1: जी,
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
1: जी,
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं
1: बिल्कुल।
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट
0: की
1: एंट्री हो गई,
0: somebody is
1: जी there। बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं, और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में है, तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने।
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगल आजम, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा काम
1: जी,
0: हम लोग सब यही कहते थे यार ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्माई का।
0: और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है, रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58।

0: एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे और सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है।
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूँ अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूँ और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहाँ से निकालोगे। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा मैं खिलाड़ी साउंड कहते मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकाल दो, तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था, वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गज्जर जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए,
0: जी
1: उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
0: जी
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, वो भी गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने है। लिख लिया, अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है, ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ।
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है, पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा
1: स्कोर लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए,
0: और गानों के नोटेशन करने
1: वो भी, वो भी, हाँ, वो
0: अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे, ये वायलिन के ये हुए, वायला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाये,
1: पार्ट बाय पार्ट।
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे
0: जी, यहाँ तो अभी थे,
1: और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 व्योला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
0: बाप रे,
1: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन, 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
0: गजब,
1: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया, ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
0: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
1: आराम से,
0: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
1: पूरे,
0: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई,
1: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही, आपको आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
0: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
1: जी जी,
0: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूज बम्प्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस है, बहुत लंबा पीस है, 2.5-3 मिनट
1: सारे किए हुए,
0: जी
1: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का,
0: हाँ उसी के ऊपर बजा,
1: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है,
0: जैसे
1: पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
0: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
1: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1.6 करोड़ रूपया खर्चा हुआ था,
0: जी
1: उस टाइम पे, मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो,
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं

0: मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ।
1: जी जी,
0: बकायदा बिल्स है हर चीज की, 1 करोड़ रुपया पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है सो।
1: जी
0: मतलब तो उस टाइम में भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
0: आज भी अगर 6-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
1: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखे तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
0: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाई,
1: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद,
0: क्योंकि क्या है उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज,
1: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया।
0: ये सुनाइए,
1: सुनते
2: वफा की राह में।

मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, होने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा,

0: इस दौरान जो है ना, मेरा जो लड़का है गुरमीत
1: जी,
0: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
1: जी जी जी,
0: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलिंस की डबिंग है, वो सब लिखना वो सब उसने किया हुआ है। बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई।
1: जी जी जी, क्या बात है। वापस चलते 1964 के जमाने में, जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
0: देखिए जी, नौशाद साहब के यहाँ थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद शफी साहब थे
1: जी,
0: लेकिन उनके साथ कभी इसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
1: इतना लंबा समय निकल गया
0: जी, क्योंकि शफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे, जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया जी, चाय पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
1: आशियाना
0: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए। नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है? देखा तो हुआ इसको, अपनी रिकॉर्डिंग भी जाता ना, शायद वायलिन भी जाता है। हाँ जी वायलिन भी जाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे? मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
1: गजब।
0: क्योंकि मैं अब, मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर? बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ, वो पहली मुलाकात थी।
1: वाह वाह वाह, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही।
0: शाह साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है, तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी
1: जी जी,
0: जैसे आप बैठे ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
1: आज भी है वो उसी जगह,
0: आज भी वो कुर्सी। और उस कुर्सी पर
1: रफी साहब भी बैठते थे,
0: बड़े बड़े सिंगर बैठे
1: जी,
0: गुलाम अली साहब से ले आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के, रफी साहब, लता जी, आशा जी, सब उस कुर्सी बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे जी। उत्तम साहब, ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
1: जी जी।
0: तहजीब और इज्जत
1: जी,
0: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
1: क्या बात है।
0: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
1: जी,
0: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब। तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था, तो जी जी जी करके बात करता था, या अंकल बोल देता था। कल सफी मियां आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी, अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का? मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए, ये बात है 72 की
1: जी जी।
0: क्या उम्र होगी मेरी? 48, 58, 60, 24 साल की उम्र
1: जी जी,
0: 23-24 के
1: जी।
0: तो मैंने कहा अंकल, मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए
1: जी,
0: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूं।
1: अरे बाप रे,
0: उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का। तो मैंने कहा अंकल 750 रूपये रखेंगे आने का। वैसे उस टाइम पे 200, 250, 300 रूपये में काम कर रहे थे लोग।
1: तो ये 3 गुना मांगा,
0: 750 रूपये
1: जी।
0: बोले ठीक है,
1: 750 रूपये एक गाने का। गजब।
0: बोले ठीक है। और यूनुस साहब, ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
1: वाह।
0: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
1: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
0: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम हाँ कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहां गई सीखने के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
1: जी।
0: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास
1: अबू
0: ले चलिए। मैं ले गया, वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही हुआ।
0: मतलब अब तक वो मुझे

0: उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब वो अबू और प्रीति, अबू प्रीति, और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैं कहा बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
1: नाम लेके पुकारते
0: हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
1: हाँ।
0: पता नहीं क्या बात।
1: अरे
0: हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो। उत्तम जी आ गए बेटा।
1: वाह।
0: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया, और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
1: जी, नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते, अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है उसको।
0: नहीं, पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए, जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
1: जी,
0: माई फ्रेंड का गाना है वो।
1: हाँ हाँ,
0: रफी साहब का गाया हुआ गाना है। मैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
1: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं उसके बाद।
0: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी जी,
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुना है। हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963-64 की बात होगी
0: जी,
1: जब उनके यहाँ डैडी दो तीन दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे,
1: बिजी रहते थे, और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए बाहर। उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
0: जी जी,
1: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको, हाँ जी आइए बैठी, बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सोहेल सोहेल है। ये कौन है? बोलते इज माई फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
0: इज माई फादर।
1: तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा,

0: What do you mean? Sir, वो कहते हैं ना, child is a father of a man.
1: Oh.
0: You mean that? Yes. हाँ, क्या करते हैं? ये violin बजाता है. अच्छा, सुनो. तो मैंने violin खोली. Violin खोली वो वही पोल का बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया था.
1: जिसकी दास्तान आप पहले बता चुके हैं.
0: फेलिक्स हेरिडे साहब ने वो पोल का सिखाया था.
1: जी.
0: वो पोल का कुछ 9-10 मिनट का है. और वो पोल का ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है. तो वो सुनते रहे.
1: जी.
0: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था. सुनते रहे 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे. फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ. तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया.
1: गजब.
0: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया.
1: वाह.
0: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए. योनो जी, आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है, आई वॉज कंडक्टिंग.
1: क्या बात है. मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा.
0: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था.
1: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म.
0: तो
1: मौसम.
0: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी. तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था.
1: मास्टर जी यानी सोनिक जी.
0: सोनिक साहब. हाँ. इनका एक अरेंजर आ गए थे, ज्ञान वर्मा.
1: जी जी जी.
0: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था.
1: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे.
0: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे. अरेंजर मुझे याद नहीं.
1: जी
0: जी. रवि साहब क्या, उन्होंने बहुत काम. हाँ, रवि साहब क्या बहुत काम किया. तो हम सब बजाते थे साथ में. ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था. तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग. तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया. हम लोग करा के बैठ गए. तो मदन साहब आए 9:45 के करीब.
1: जी.
0: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब. हाँ ज्ञान, सुनो. तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने. फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया. तो वो बैठ गए. एक्चुअली खड़े हुए थे, तो कुर्सी पे बैठ गए. और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
1: पसंद नहीं आ रहा है
0: कुछ. इनको म्यूजिक पसंद नहीं आया. तो वो गाना था हर तरफ अफसाने. तो ये गाना था और मैं बजाते चले गया.
1: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का.
0: हिंदुस्तान की कसम. और मैं ये गाना बजाता चले गया. 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ और एक लड़का वायलिन बजा रहा है.
1: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में है, उनको पसंद नहीं आ रहा
0: उसके
1: है.
0: उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता.
1: ये किस धुन पे किया था
0: पता नहीं. आई डोंट नो.
1: जी.
0: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं.
1: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था.
0: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा.
1: जी.
0: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था.
1: हाँ.
0: मैं उनका ही गाना दारारी यही बजा रहा था. बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
1: अपनी तरफ से.
0: अपनी तरफ से बज गया.
1: वाह.
0: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया. तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते व्हाट डिड यू प्ले. मेरे तो पसीने छूट गए. एसी में मुझे पसीना आ गया. सर आई सेड सर नथिंग. व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ. एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी. मैंने मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ. मैंने सर या आई प्लेड दिस. ये बजाया मैंने.
1: हाँ वो एक पीस. आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको.
0: लाया तो हूँ.

0: ज्ञान, ये जो उत्तम बजा रहा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वायलिन होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वायलिन।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से युवराज जी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए,
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ अब ये

आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। प्रातः 11 बजे है

प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं चंदनदास की आवाज में गाई हुई कुछ चुनिंदा गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अभी आप सुन रहे थे सिम्बा फिल्म का ये गीत, आवाज थी राहत फतेह अली खान की। लीजिए बढ़ते हैं आप अगले गीत की तरफ और सुनते हैं बनारस फिल्म का ये गीत। गीत को आवाज दी है श्रेया घोषाल ने, संगीत समीर का, और गीत को लिखा है समीर ने और संगीत हिमेश रेशमिया का।

आवाज में ये गीत गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। लीजिए अब सुनिए आजा नचले फिल्म का ये गीत। गीत को आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने, गीत को लिखा है जयदीप ने और संगीत सलीम सुलेमान का।

अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में आजा नचले फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए जुबेदा फिल्म का ये गीत है। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की, गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत ए आर रहमान का।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

अरे अनीता जी, अश्रोताओं आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत। गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। दिन के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

गीत गाता चल। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। आज है फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि, तो उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते नदिया के पार फिल्म से ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविन्द्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।

नदिया के पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जसपाल सिंह, हिमलता की आवाजें, रविन्द्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मों के गीत।

अहमद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपने सुना दोस्ती फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या को याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों के जरिए। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत उपहार फिल्म के इस गीत में।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन के बोल। उन्हीं के संगीत से सजा था ये गीत सौदागर फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं अखियों के झरोखों से। इस फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं संगीत और बोल रविंद्र जैन का।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बरजात्या की फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं।

चिक चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। येसुदास और हेमलता की आवाजों में रविन्द्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं पिया का घर फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। येसुदास हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजें, रविन्द्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ पलों के बाद
1: जरा नजरों से

सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, जिसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में। तो आज की इबारत या टेक्स्ट कौन सी है ये आपको पढ़कर सुना देते हैं। हमने लिखा है, आज निगाहें मिली और इशारे हुए, दिल ने कहा वो हमारे हुए, फेरी नजर उसने और टूटा ये दिल, क्यों उस बेवफा के नजारे हुए। एक नन्हा सा सपना आंखों में खिला, पलक झपकते ही हुआ लापता, ढूंढती है अखियां पुकारती है नजर, आंखों आंखों में ही गुम वो सारे हुए। नजरों के किस्से निगाहों की बातें, गली गली ऐसे इशारे हुए, नजरें उठी भी नजरें झुकी भी, नयन तेरे कैसे बेचारे हुए। कभी भरे आंसू कभी प्यार छलका, तो कभी नैना ये सुलगते से अंगारे हुए। तो इनमें से शब्द आपको चूज करना है, चुनना है और बताना है कि कौन कौन से शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत सुनवाए जाएंगे। और आपने तो शुरुआत कर ही दी है कमेंट्स के जरिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत आंखें नैन निगाहें इन शब्दों से के गीतों से सजाई गई है। किसी से प्यार में आंखें ही अक्सर वो सब कुछ बयां कर देती है जो जुबान से कहना मुमकिन होता है मुमकिन नहीं होता है, चाहे वो मिलन की खुशी हो या जुदाई का दर्द। आंखें हमारी गहरी भावनाओं की आईना होती हैं, क्योंकि इन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है। किसी से जुदाई के वक्त सबसे पहले भारी होती हैं, क्योंकि कभी कभी नैनों से आंसू नहीं गिरते तो भी नैनों का सूनापन और दिल के खालीपन को ये आसानी से जाहिर कर देती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी और भी हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी हैं, वो आपको बताएंगे ही। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपको किन की आंखों का इशारा याद है और आपको आंखों की भाषा कितनी समझ आती है और सबसे ज्यादा नजरों से बातें कब की जाती हैं। तो ये बातें आप बताइए। और कोई अगर किस्सा हो जिसमें आपने कुछ इशारा किया हो किसी को और उसने समझ लिया हो कुछ गलत, तो ऐसे मजाहिया किस्से भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइए।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गद्यांश में नयन नये निगाहें पलक आंखों की बात होंगी। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की भारत एक सुंदर कविता के रूप में जो प्रेम के शुरुआती आकर्षण, उसकी मासूमियत और फिर अचानक मिले धोखे या जुदाई के दर्द का बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण करती है। इसमें आंखों और नजरों के माध्यम से बयां होने वाले एहसासों की गहराई को बखूबी उकेरा गया है। प्रेम की कोमलता और उसकी बिछोह की कसक का बहुत ही संतुलित और काव्यात्मक मेल देखने मिलता है। वही हमारे साथी का कहना है कि कभी पलक झपकते ही कोई ख्वाब सा सामने से गुजर जाता है और आंखें उसे पकड़ने को फिर उसी दिशा में ठहर जाती है। निगाहें भी कितनी अजीब जुबान होती है, फिर बिना लफ्जों के जाने कितनी दास्तां कह जाती है। कभी नैनों की झलक से प्रेम का इजहार हो जाता है तो कभी पलकें झुकाकर दिल अपनी राज छिपा लेता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, न मनचाहा होता है। कुदरत सबको नवाजती है प्यार प्रेम और खुशी से, सब्र जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी का कहना है कि आंखों की भी अपनी एक जुबान होती है बिना लफ्जों के कह देने की। कभी एक नजर में कोई अपना सा लगने लगता है, कभी वही नजर लौट जाए तो दिल में एक खाली सी जगह रह जाती है। आंखों में खिले छोटे से ख्वाब भी अजीब होते हैं, पलक झपकते ही बिखर जाते हैं, मगर उनकी किरचें देर तक यादों में चमकती रहती है। इश्क भी आंखों का ही कोई पुराना किस्सा है, जो कहा कम जाता है महसूस ज्यादा होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सभी कार्यक्रम उन्हें अच्छे लगते हैं और वो देश देश भर में सारी जगह जब ये कार्यक्रम जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे एक और साथी का कहना है कि आज बातें नजरों की आंखों की है, पर यदि आंखें ही नम हो या आंसुओं से भरी हो तो कोई कैसे लिखे क्या लिखे। किसी ने आंखों में आंसू दिए, हम चाहते तो बदले में उसकी आंखें भी नम कर सकते थे, मगर दिल ने कहा छोड़ दो। हर दर्द का जवाब दर्द से देना जरूरी नहीं होता। हमने उसे माफ किया, कोई सजा नहीं दी, बस दिल से एक दुआ निकली, तुम जहां भी रहो खुश रहो और कभी किसी के दिल को इतना मत दुखाना जितना मेरा दुखा है। दिल में दर्द हो फिर भी किसी के लिए नफरत ना हो। भाई हम तो यही कहेंगे कि आपकी आंखों में जो आंसू आए हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। और ये गीत सुनिए, शायद इस गीत से आपको कुछ आराम हो। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

यहूदी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज से। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि कुछ साथी कह रहे हैं कि अनसुना सा गीत है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि आज सोच रहा था कमेंट है ना करूं, फिर दिल ने नहीं माना क्योंकि आप हम जैसों के कमेंट की ओर ध्यान ही नहीं देते। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी कमेंट सामने आते हैं हम उन्हें जरूर पढ़ते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, गुस्से वाला ही कमेंट सही, नाराजगी वाला कमेंट ही सही शामिल तो हुआ। हमारे एक साथी कह रहे कि नजरें मिली तो लगा जिंदगी मिल गई, धड़कनों को जैसे एक नई साज मिल गई, पर वो मुस्कुराहट महज एक छलावा थी, वादों की कश्ती बीच भंवर में खो गई, एक आस जगी थी सूने दिल में जो पल भर में आंसुओं के धार में बह गई, खोए हुए उस साए को तलाशती ये राहें जहां कभी चाहतों के हंसी सिलसिले हुए, निगाहों के खेल भी बड़े अजीब होते हैं, कभी पास लाते हैं तो कभी दूर कर जाते हैं, वो जो पलकों को उठाकर मुस्कुराना तेरा, अब वही यादें सीने में तीर सी चुभती हैं, कभी इन आंखों में वफा का नूर था, आज वही नैना तन्हाई के साए में अंगारे हुए। वही क्या बात है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि शब्दों से बनने वाले गीत यदि लिखे जाएं तो पहले तो शब्द ही इतने हैं कि उन्हें गिनने और गिनकर लिखने में कम से कम आधे घंटे में पूरे हो जाएं तो गनीमत है, फिर उन पर गीतों के चयन प्रक्रिया में तो यदि 4 से 6 घंटे लग जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाई पूरी की पूरी फिल्मों के गीतों को खंगालते हुए चयन करना कोई तो 1-2 घंटे का काम है नहीं, फिर कार्यक्रम तो केवल 1 घंटे का है। फिर भी भाई कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद के गीत लिख सकते हैं और यही तो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि आपकी पसंद के गीत और हमारे गीत कितने मिलते हैं यही तो पता चलेगा। और शब्द हो सकता है कि आप कोई नए शब्द चुन ले उस इबारत में से जो हमें भी ना नजर आए हों, और ये बातें ही इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है। तो अपनी जो प्रक्रिया है आप जारी रखें, हमारी प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती।

तारे क्या देखें। और हमारे एक और साथी कहती हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, मोहब्बत का, प्यार या प्रेम का या जीवन का कोई भी गहरा भाव, वो अक्सर शब्दों का मोहताज नहीं होता और आंखों से ही बयां हो जाता है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जब जुबान खामोश होती है तब भी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। शब्दों में झूठ छुपाया जा सकता है लेकिन आंखों की चमक या उसकी नमी कभी झूठ नहीं बोलती। प्रेम का असली स्वाद और सुकून किसी की सिर्फ एक नजर से महसूस किया जा सकता है। बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखकर पूरी बात समझ लेना सबसे खूबसूरत रिश्ता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि हमको हमारी गणित की अध्यापिका का खतरनाक तरीके से आंखें निकालकर देखने का अनुभव आज तक याद है। उनकी आंखों का एक इशारा सारी क्लास को पल भर में ही खामोश करवा देता था। भाई ऐसे ही आपको याद आ रही है, किनकी आंखों का इशारा याद आ रहा है, क्या कोई बेहतरीन अच्छा अच्छा किस्सा भी हो सकता है, कुछ खूबसूरत किस्सा हो सकता है, कुछ ये डराने वाला किस्सा हो सकता है। अक्सर तो जब घर में मेहमान आते हैं तो भी आंखों का इशारा बहुत किया जाता है। कुछ ऐसा अगर आपको याद आए तो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल याद करके बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का वो गीत है और लिखा किसने है।

0: पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल।
1: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया और हमारे साथी अलग अलग बातें भी लिख भेज रहे हैं। हमारे साथी मोहम्मद रफी की आवाज पहचानना तो बिल्कुल पहचान ही सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुबा से तो झूठ पकड़ा नहीं जाता मगर आंखें सब बयां कर देती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जो बात जुबा नहीं बोल पाती आंखों से पता चलता है। कई बच्चे तो आंखों में ही डरते हैं, इन्हीं आंखों में हम कई सपने सजाते हैं लेकिन आंख खुली और सपना जैसे आंखों से ओझल हो जाता।

0: जाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कोई बता सकता है कि मेरा कमेंट शामिल क्यों नहीं होता, शायद किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। तो वो शायद जवाब भी आपको साथ ही साथ आपने दिया है। हालांकि कमेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी कुछ कमेंट्स उनमें गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने आपकी बात पढ़ी हो तो हम जरूर उसे शामिल कर लेते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जब आंखों में आंसू हो और दिल जानता हो कि इन आंसुओं की वजह कौन है, फिर भी दिल उसी के लिए सजा नहीं दुआ मांगे, तो समझिए वहां नफरत से कहीं ज्यादा दोस्ती और इंसानियत बची हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नयन निगाहें आंख लोचन चक्षु पर बातें होंगी। आंखों का एक गुणधर्म है, वो अधिक खुशी और गम दोनों पर छलक जाती हैं। वाह क्या बात आपने कही। और एक खेल हुआ करता था जो बचपन में हम खेला करते थे, जिसमें एक दूसरे से नजरें मिलाकर रखे रहना होता था बहुत लंबे समय तक, और जो पहले पलकें झपकाता था वो हार जाता था। तो क्या आपने वो खेल खेला है और क्या आप उसमें जीता करते थे या नहीं, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम इस गाने को जब सुनते हैं, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, तो अजीब सी उधेड़ बुन में होता हूं कि नजरों का निशाना भी कहीं चूक जाता है। ये तो ऐसा कमाल का हथियार है कि बिना किसी रसायन बिना टेक्नोलॉजी का ऐसा बम है कि जिस पर गिरता है हाय करके बस रह जाता है। आमना सामना हुआ कि दुश्मन चारों खाने चित, वो दाएं बाएं भाग भी नहीं सकता, खुद ही शिकार के पास पहुंच जाता है और समर्पित भाव से निवेदन करने लगता है कि दिल जिगर के साथ मेरी सारी संपत्ति सब तुम्हारा है, बस हमारी जान बख्श दो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने मजे के तौर पर लिख दी है, लेकिन कभी कभी तो निशाना चूक भी सकता है। तो क्या कभी निशाना चूका आपका, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी ने बड़ी मजाया बात लिखी कि आंखों ही आंखों में मोबाइल बस गया, देखते ही देखते चश्मा लग गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, हमें सारी बातें आप बताइए। और कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बातें आप हमें बता सकते हैं, जो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हैं। और कार्यक्रम में आप शामिल हो रहा है एक ऐसा गीत जिसके बारे में आप हमें बताइए कि किस फिल्म का गीत है।
1: झुके जो तेरी में

कंगन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब दो दिल एक दूसरे की धड़कन सुनने को बेताब हों तो दिल की बातें बताए बिना नहीं रह सकते, पर परिस्थिति बस कहा भी न जाए तब भी आंखें एक दूसरे से बात करती हैं, कोई शोर नहीं करती पर चोर जरूर करती हैं। वही हमारे एक साथी का कहना है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो किसी के सामने कुछ भी बोल देता था, और जब मैं आंख से इशारा करती कि चुप रहे तो सबके सामने बोलता था कि मम्मा आंख से इशारा करती हैं, तो सब हंसा करते थे। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अब बिन्नी बुनना सीख रही हूँ, 35 टाके की नातू के लिए इधर उधर ध्यान गया तो कांटा चूक गया। ऐसा होता है, मतलब उसमें नजर ध्यान रखना जरूरी है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के सभी पति अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नाचते हैं, यही सत्य है। भाई कितना सत्य है तो सब पति पत्नी ही बता सकते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, वो आंखों के बारे में कह रहे हैं कि निगाहों से शुरू हुआ जो सफर वो इशारों में खो गया, कभी हंसाया इन आंखों ने तो कभी अशकों में भिगो दिया एक नन्हा सा सपना जो सजाया था पलकों पर, न जाने वो पलक झपकते ही कहां गुम हो गया। तो हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नजर भी अजीब शह है, दो की चार हो जाए तो प्यार कहलाती है, झुकी झुकी नजर हो तो प्यार का इजहार होती है, कुछ लोग बॉस की नजर में चढ़ने के लिए दिन को रात और रात को दिन कहने से नहीं चूकते, दूसरी ओर मेहनती आदमी देर से ही सही मगर नजर जरूर आता है, उधार लेने वाला नजरें चुराता है और वसूलने वाला उसे खा जाने वाली नजर से देखता है। भाई क्या बातें कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब किसी से नजर मिलती है तो अक्सर बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है, आंखों में खिले छोटे से सपने, नजरों के इशारे और दिल में उठते प्यार की नजरें, प्यार की लहरें मन को एक अनोखी खुशी देती है, कभी नजरें उठती हैं तो प्रेम झलकता है, कभी झुकती हैं तो शर्म और अपनापन, और कभी आंसुओं में छिपा दर्द सामने आ जाता है, यही नजरों और नैनों के अनकही किस्से प्रेम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वैसे नजरों के या कहें आंखों के रंगों के ऊपर भी कहा जाता है अलग अलग भावों के लिए कि जब कोई गुस्सा होता है तो आंखें लाल कर देता है, और इस तरह की बातें भी होती हैं। क्या आप भी ऐसे कुछ किस्से या बातें जानते हैं या कुछ कहावतें भी आप हमें बता सकते हैं, और साथ ही बता सकते हैं कि किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहने कि मैं तो सोचती हूं घर की शांति बनाए रखने के लिए आंखों से ही बातें हों तो दुनिया एक शांतिमय जगह हो जाए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुके तो तेरे नैना गीत बहुत दिनों के बाद सुना, उन्हें अच्छा लगा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें नेमत हैं और शायद सबसे कीमती चीज जो हमारी हैं वो हमारी दो आंखें हैं। ये आंखें हैं जो हर भाषा को पढ़ने का हुनर रखती हैं। जीवन के सबसे कठिन पलों में अपने सबसे करीबी साथी को आंखों ही आंखों में सहारा देकर देखना, जीवन में जिसने आंखों की मूक भाषा पढ़ ली समझ लो उसने आधी दुनिया का सच समझ लिया। वहीं हमारे एक साथी कहने कि जहां शब्द अधूरे रह जाते हैं नैनों के इशारे काफी होते हैं, हृदय की अनकही भावना बिना बोले नजर ही कह देती है। आंखों की एक हल्की सी हरकत, पलकों का उठना, शर्मा कर झुक जाना, यही प्रेम की पहली और सच्ची लिपि है जिन्हें बिना छुए सिर्फ रूह महसूस करती है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि आंखें मां की ममता भी मां की ममता भरी नजर के सामने सब फेल हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में पिता की आंखों की भूमिका ही प्रभाव डालती है। बच्चों और अन्य पर अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम आंख ही होती है। आंखों के इशारे से ही प्यार झलकता है, सहम भी जाता है और दुखी भी होता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे कई बार स्कूल कॉलेज में कंफ्यूजन होता था कि स्कूल की टीचर मुझसे प्रश्न पूछ रही है या पीछे वाले से। ये शायद टीचर जिस तरह से देखा करती होंगी उससे इन्हें ऐसा लगता होगा। हमारे एक और साथी ने एक बड़ा ही मजेदार किस्सा लिखा है कि सालों पहले मैं मेरे पति का हाथ बटाने शॉप पे जाया करती थी। एक बार एक सेल्समैन आया जिनसे मेरे पति मिलना नहीं चाहते थे। उसने मेरे पति का नाम लेकर पूछा कि भाई साहब नहीं है, कब मिलेंगे। मैंने तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे मना किया और मैंने सेल्समैन से कहा कि भाई साहब 2 दिन बाद मिलेंगे। 8 दिन बाद वो ही सेल्समैन मुझे मिला तो हंसकर पूछने लगा कि आप इतनी जल्दी कैसे भाई साहब के इशारे को पहचान गई, यानी कि उन्होंने देख तो लिया था लेकिन इस बात का मान रखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी हमें नजरों की भाषा समझ नहीं आती पर नजर लग जाती है, खासकर छोटे बच्चों को, नई ब्याहता बेटी बहू को ऐसा लोग कहते हैं, होता भी है। इसलिए हर माँ अपने बच्चों को काजल का टीका लगाती है नजर से बचाने के लिए। भाई ये भी माँ की ममता का ही एक रूप है, लेकिन कभी कभी जब माँ गुस्से में आती है तो उनकी नजरें देखकर बच्चे का जो हाल होता है वो तो वही समझ सकता है। क्या कैसा ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ हमें बताइए। और हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जिसमें आपको पहचानना है कि किस फिल्म का गीत है।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया और हमारे साथियों ने कहा कि नई फिल्म के गीत हैं, हमने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोई बात नहीं, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें कभी प्यार छलकाती है, कभी आंसुओं से भर जाती हैं, तो कभी दर्द और बेबसी में सुलगते से अंगारे बन जाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब दिल टूटता है तो सबसे ज्यादा सजा आंखें ही भुगतती हैं, जो हर एहसास को चुपचाप सहती हैं। निसंदेह ये कविता केवल आंखों के मेल मिलाप की नहीं बल्कि उस टूटे हुए विश्वास की कहानी है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। वहीं मालिक साथी का कहना है, कभी जो निगाहें दिल का हाल मुस्कुराकर सुनाती थी, आज वो पलकें आंसुओं का बोझ छुपाने में थक जाती हैं। वो नैनों की भाषा अब बस खामोशी से रोती है, जब मोहब्बत अधूरी हो तो रातें आंखों में ही कटती हैं। और एक और साथी का कहना है कि कभी कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर ही काफी होती है, और जब निगाहें मिलती हैं तो जैसे अनकहे इशारों में ही मोहब्बत की कहानी लिख दी जाती है। आंखों में सजते हैं छोटे छोटे सपने, फिर इंतजार करती पलकें और कभी नैनों में प्यार छलकता है। कभी यही नजरें झुककर शर्माती हैं तो कभी दूर होकर यादों में बस जाती हैं। इनमें कभी विरह के आंसू उतर जाते हैं और कभी वही आंखें शिकायत बनकर सवाल करने लगती हैं। वही तो आंखों की खूबसूरत भाषा है जिसे दिल पढ़ लेता है, अगर उसे सुरों में ढाल दें तो एक सुरीला मधुर गीत बन जाता है। तो ये तो बात हो गई, एक सुरीला मधुर गीत आपका इंतजार भी कर रहा है इस कार्यक्रम में, और आपकी बातें तो आप भेज ही रही हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप नजरों से या इशारों से कोई बात किसी को कहें लेकिन वो व्यक्ति आपकी बातें समझता ही नहीं या समझती ही नहीं, तो क्या करते हैं आप ऐसे मामले में? और हमें पूरा यकीन है कि जो गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आपको पता होगा किस फिल्म का ये गीत है, और नायक का नाम बताएंगे तो और भी अच्छा होगा।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शाहरुख खान इसमें नायक हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, और अगर खुशी होती है तो आंखों में ही चमक पहले होती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि इस समय मेरी नजरें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर सुरीला सफर की पोस्ट पर है और कान रेडियो की तरफ, जो सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो उसका जवाब देने के लिए इस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं, ऐसा कहना होगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जब देखूं गुलाबी लाल पीली अंखियां, ये बात तो एक डॉक्टर किसी मरीज से पूछते हैं, पता नहीं कौन से फिल्म का गीत है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि निगाहें कभी खामोश नहीं होती, बिन कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं। कभी प्यार की रोशनी बनती है, कभी दर्द की कहानी कह जाती है। किसी की एक निगाह में अपनापन मिलता है तो किसी की एक नजर में पूरा संसार। निगाहें दिल का आईना होती है, जो छुपा हो दिल में कर देती है इजहार। वहीं हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही गंभीर सवाल। उनका कहना है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो नजर उतारने के लिए क्या करें। भाई हमें तो इसके बारे में यही पता है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो आप भी उन्हें नजर लगा दें। वैसे हमारे साथी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आंखों के कलर की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, तो कई रंग आंखों के हमने देखे हैं और उन पर गीत भी बने हैं, तो ऐसा कोई गीत आपको याद आता है और कौन कौन से रंगों की आंखें आपने देखी हैं, हमें बता सकते हैं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। बताइए किस फिल्म का गीत किसने लिखा है।

0: आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। असरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना। हमारे एक साथी कह रहे कि मैं तो इकलौता बेटा था, तू माँ की आंख का तारा था, कभी आंखें तरेर कर उन्होंने हमें देखा ही नहीं। ये हमें मतलब देखा हो ऐसा हमें याद नहीं। हाँ, पिताजी ने गुस्से में पढ़ाई को लेकर आंखें लाल पीली की तो माँ ने हमेशा बचाव किया। उनकी नजरें रास्ते पर टिकी रहती जब मैं स्कूल जा रहा होता या आ रहा होता। हमारे मास्टर ने स्कूल में एक बार दो डंडे मारे थे तो माँ मास्टर को खा जाने वाली नजरों से देखकर उन्हें ऐसी फटकार लगाई थी कि वे आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। सारी क्लास की बच्चों की नजरें मेरी माँ पर थी। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी पूरी बातें नजरों आंखों और इन बातों पर लिखा। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, खुशी हो तो आंखों में चमक पहले होती है। हमारे कौर साथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट किया है जिसे हम हिंदी में कहने वाले हैं। हम वो कह रहे हैं कि आंखें सिर्फ हमारे चेहरे पर ही नहीं होती बल्कि आंखें मानव शरीर में हर जगह होती। हमारे कान, हमारी जीभ, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे छूने की शक्ति, स्पर्श की जो सारी चीजें होती हैं, वो सारी जो इंद्रियां होती हैं, वो उन सभी की अपनी अपनी एक आंखें होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार और सबसे ज्यादा नजर आने वाली ये जो आंखें हैं हमारी, वो हमारे दिल की आंखें होती हैं। माफ कीजिएगा। और उनका कहना है कि इन आंखों से हम बहुत सी चीजों को देख सकते हैं लेकिन वो चीजें दूसरे लोग नहीं देख सकते। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग चालू है क्या, हमारा नंबर नहीं लगता। भाई, हमारी तो यही उम्मीद है, यही हमारी शुभकामनाएं कि आपका नंबर भी जरूर लगेगा। लेकिन अभी नंबर आ गया है गीत का, तो दूसरा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया हमें बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।
1: निगाहें मस्ताना

मैं रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो बोल गए मस्ताना, देख समा

0: गाना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और देव आनंद इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात आपने सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे नसीब में आंखें मिलाना लिखा ही नहीं था, बच्चे भी मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं शासन नहीं करना चाहती। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आंखें मिलाने का खेल मैंने खेला है जो हमने पूछा था और हमेशा मुझे हार मिली है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नहीं नाच सकता और ये बात मेरे सभी दोस्त जानते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब कोई मेहमान आता था तब हम सारे बच्चे वहां घूमते टहलते रहते थे क्योंकि टेबल पर सजाई गई भोज्य सामग्रियां हमें खूब लुभाती थी कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन फिर माँ और ताई जी आंखों से इशारा करती कि चलो भागो यहां से। जब उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता तो सीधे साफ शब्दों में बोला जाता कि जाओ बाहर जाकर खेलो। वहीं हमारे साथी कहने आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी या फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे तो आंखें काली भूरी सुनहरी नीली देखी है पर फिल्मी गीतों में गुलाबी आंखें और कत्थई आंखों वाली लड़कियां भी देखी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाबी आंखें छोड़कर सभी आंखें हमने देखी होंगी। और एक साथी कह रहे हैं कि पड़ोस में जब कोई मेहमान आता था तो अपनी बेटियों को आंखों के इशारे से समझा देती थी कि किस प्रकार की चाय और नाश्ता देना होता है। आंखों के रंग से मुझे एक बात याद आई, हमारे एक साथी ने कहा कि लंकापति रावण की आंखें हमेशा लाल हुआ करती थी। भाई इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बांके बिहारी जी का वृंदावन में पर्दा जब बार बार बंद और खुलता है ऐसा मानते कि ये छलियां हैं, कहीं किसी से अगर उनकी आंखें मिल गई तो उसके साथ ही चल देते हैं। तो चलिए हम भी चल देते हैं इशारों इशारों में बातें करने, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम गीत पहुंच चुका है आपके सामने और अब आप बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और वक्त ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: अपने शहर की सड़क के किनारे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और बस वाहन चलाने वालों पर एक नजर डालिए। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोपहिया या चौपहिया वाहन चला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने का मतलब है खुद को और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को खतरे में डालना। ये बातें मीडिया के जरिए बार बार समझाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के लोग गाड़ियां चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। गाड़ी रोककर दो मिनट बात करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो गाड़ी चलाते हुए ही की जा सकती है और खुद को और दूसरों को खतरे में डालना जरूरी है?
1: ए भाई, जरा देख के चलो।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

करता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाए।

0: दरअसल वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने शहरों की सड़कों को सुरक्षित बनाएं। हम सब यातायात के नियमों का पालन करें। हम सब दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारे फैशन, हमारी स्टाइल के अनुरूप क्यों ना बैठता हो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपने बाल खराब हो जाने के डर से या अपना चश्मे की स्टाइल नजर न आने के डर से हेलमेट लगाना पसंद ना हो, लेकिन हेलमेट आपकी जान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हेलमेट के बिना बिल्कुल सफर पर निकलना ही नहीं चाहिए।
1: अरे अरे ए, ए,

ये मौसम है बड़ा सुहाना ला ला ला ला ला ला ला ला। एक तो ये मौसम है।

तमाम शहरों में ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए गए हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चले, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हरी होने से पहले ही वो अपने वाहन दौड़ा देते हैं। जरा सोचिए कि दूसरी तरफ से तेजी से आ रहा वाहन अगर आपके वाहन से टकरा जाएगा तो आपकी ये जल्दीबाजी आपको कहां पहुंचा देगी, ये सोचना कितना खौफनाक लगता है ना। जो सड़क सुहानी होती है वही सड़क आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। आइए हम अपनी और तमाम लोगों की हिफाजत करते हुए एक साथ अपनी सड़कों पर चलते रहें, किसी के लिए शामत या मुसीबत न बने।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं

0: निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्धनगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर

0: तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
1: पंजाब में नशा मुक्ति की अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारे हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।

0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: कोई आए

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं परवरिश फिल्म से ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के बोल, दत्ताराम वाडकर का संगीत।

0: देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फागुन फिल्म के इस गीत में आशा भोसले को। कमर जलालाबादी ने से लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: फागुन फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले को, कमर जलालाबादी ने इसे लिखा ओपी नैयर की तर्ज।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जमाना है बुरा। सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा।

0: हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार, चंचल वर्मा का, और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का, सखाओं का। और नमस्कार नेहा आपको भी।
1: नमस्कार चंचल जी, आपको और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: तो आज इस मंच पर बहुत दिन बाद हम मिले हैं और बताते हैं कि आज किन विषयों पर हम मिलजुल कर बात करने वाले हैं अपने सुनने वालों के साथ।
1: हाँ, ये आपने सही कह दिया कि सुनने वालों के साथ किन विषयों पर बात करने वाले, क्योंकि हम तो आपस में बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज कथा सुधा में बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका दूसरा भाग हम सुनने वाले हैं।
0: तो बिल्कुल हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पहला भाग सुन चुके हैं सुनने वाले और दूसरा भाग सुनेंगे। तो भूलने से मुझे याद आया कि भूलने की जो धीरे धीरे शुरुआत होती है, आगे चलकर ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। तो इसके शुरुआती लक्षण जब हो तभी से पहचान लेना चाहिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर या डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियों की। और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, इस पर कुछ बातचीत

0: होगी। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और मन में शांति बनी रहती जब अच्छा खाना खाने मिले, इसलिए प्रादेशिक व्यंजनों में आज हम लाए हैं कश्मीरी व्यंजन हाक साग और ल्योदूर चमन।
1: तो ये हाक साग जो है ना, कुछ कुछ पालक से मिलता जुलता साग होता है, लेकिन बनाने की विधि सबकी थोड़ी अलग होती है। तो हमारे श्रोता वो हमें भेज रहे हैं इसकी रेसिपीज, वो हम बाद में सुनेंगे और पढ़ेंगे इसे, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।
0: हाँ,

0: ये बहुत सुंदर गाना था ना। और बहुत दिन बाद जब ऐसा गाना सुनते हैं ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बहुत दिन पहले गाना मैंने सुना था और कहते ना कि हम भूले नहीं इस गाने को
1: जी।
0: और आज याद आई तो हमने लगा दिया।
1: तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें भी याद दिला दिया जो हम तो भूल ही चुके थे इस गाने को, या कहें कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: और क्या होता है जब कोई चीज किश्तों में सुनते हैं ना, इनकी एक भाग सुना ना सुना दूसरा, तो वो अधूरापन सा रह जाता है। इसी तरह से कोई कहानी है, आधी सुन ली हो आधी ना सुने, तो वो बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि आगे क्या होगा। तो कथा सुधा में जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है, बड़े भाई साहब पहला भाग, तो उन्हें उत्सुकता है इसका दूसरा भाग सुनने की, तो देर नहीं लगाते हैं सुनवा देते हैं कहानी
1: जी। कथा सुधा, भाव भरी कहानी।

0: खुशियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना,
2: अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
3: देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
2: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
1: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
2: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन

0: में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
1: अरे अरे अरे, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिंटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकील पर दुख होता है। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम एमए, डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं

0: कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं न बदहवास हो, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
1: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
0: कनकवे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी लल जाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
1: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुता में बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग। और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है
1: जी,
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीजों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीजों के साथ में बहुत चीजों को हल्के में लेती हैं।
1: हाँ।
0: और जब हल्के में हम चीजों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या

नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली।
3: और हमें तो याद है ये सारी चीजें, और हमें ये भी याद है कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो भूलने की बीमारियां हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करें और इससे जुड़े जो डर हैं उन्हें खत्म किया जाए।
2: बिल्कुल, कोई भी बीमारी या समस्या उसके नाम से ना डर सबसे पहले आ जाता है। तो ये जागरूक हो जाएं लोग और उसे डरे नहीं, उसका उपचार कैसे करना है और इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल यानी कि ADI नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को ही वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
3: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसमें लगभग 60 से 70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
2: बिल्कुल, और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर की ही महिलाएं हैं, कईयों से सुना है कि धीरे धीरे ना चीजें वो भूलने लगती है, लेकिन इन चीजों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से जरूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता

0: डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स, इसका मतलब है कि जितना जल्दी जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम यहां इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल सके।
1: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नजरअंदाज न करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी आदत नजर आ रही, रोज के काम करने में भी अगर दिक्कत आने लगे, समय और जगह को लेकर अगर भ्रम होने लगे, या बोलने में सही शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहते हैं, या आपका मूड और व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो इस तरह की जो लक्षण है, मतलब आमतौर पर हम छोटी मोटी चीजें भूलते हैं जो कि आम है, लेकिन कुछ ऐसा भूल जाना कि आपने कभी तुरंत ही वो किया है,
0: yes,
1: किस जगह हैं आप, अगर ऐसा आप हो रहा है तो फिर आपको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: कई बार किसी चिर परिचित को हम जानते हैं लेकिन उसका चेहरा याद है, हम उसे पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा होता है। हमें कोई चीज किसी से मंगवानी है कि भाई वो चीज हमें लाकर दे दो, लेकिन उस चीज का हमें नाम याद नहीं आता है। आपको अगर पेन मंगाना है, कोई किताब मंगानी है, तो आपके सामने उसकी छवि पूरी है लेकिन आप सामने वाले को बयान नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका नाम आपके जहन में नहीं होता। तो यही इस तरह के लक्षण होते हैं। और भारत में हम देखें तो लगभग 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और पहले गांवों में इसे बुढ़ापे की समस्या समझकर लोग नजरअंदाज करते थे, समय है, उम्र बढ़ रहा है तो ये चीजें होना लाजमी है, लेकिन इस बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और वैसे तो कहना चाहिए कि पूरा कोई पक्का इलाज है नहीं इस समस्या का, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इसके जोखिम को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
1: हाँ, जैसे कि हम रोजाना अगर व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, धूम्रपान और मदिरापान से दूर होते हैं, सामाजिक मेलजोल ज्यादा बढ़ाते हैं, दिमागी कसरत की चीजें होती है जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियां जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियां हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे कि भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
1: बिल्कुल, हमारे एक साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
0: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब शांति की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की, और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
0: तो देखियो ना, मैं भी भूल गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में और शांति दिवस का संदेश पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो भाई बहुत शांति है ना अभी स्टूडियो में समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज को, यानी कि जो हिंसा है उसे रोकने की कोशिश वो जरूर करें, अपने आप से जो कोशिश उनसे हो सकती है।
1: हाँ, और जैसे कि हमने बताया कि हर वर्ष कोई थीम होती है हर दिवस की, तो इस वर्ष की शांति दिवस की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको शांति प्रिय एक विश्व चाहिए तो उसके लिए अभी प्रयासरत होना होगा। और ये थीम याद दिलाती है कि शांति अपने आप नहीं आती, इसे बनाना पड़ता है साहस, समझौते और कार्रवाई से।
0: और ये कार्रवाई भी हमें ही करनी होती है, कोई और आके काम नहीं करेगा। और शांति का मतलब केवल युद्ध को रोकना या युद्ध नहीं करना ये नहीं होता। इसका अर्थ है कि न्याय, समानता, मानवों के अधिकार, सबका सम्मान, ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो जहां शांति होती है वहां परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, तभी तो उस देश का

0: भविष्य जो है वो उज्जवल बनेगा जी। और इस दिन जो है यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर पीस बेल यानी कि शांति का घंटा वो बजाया जाता है और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतरधार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफेद कबूतर होता है शांति का प्रतीक माना जाता है उन्हें भी उड़ाते हैं।
1: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सब का काम है, नफरत से भरे शब्द न बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें जो होती हैं उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से न दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, समझाएं किसी तरह से, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो आपने कहा दूसरों को सुने समझें, तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं। उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली यानी मेरी धर्म पत्नी शांति बनाए रखी है और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
1: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा जी। इसी वजह से ये शांति बनी हुई है, क्योंकि जब कहते हैं कि एक कार्य क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज जी। तो ऐसा वो भी बनाए रखे शांति, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है क्रिया की। और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था, सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था। घर में दूध ना होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
0: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती जब सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना, तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे।
1: बिल्कुल सही बात है, आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप पोस्ट पर डाल सकते हैं।
0: हाँ।
1: चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदू चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है।
0: हाँ।
1: और ल्योदू चमन का मतलब होता है ल्योदर मतलब होता है पीला और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसमें प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्च इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज्यादा नहीं होता।
0: कुछ भी नहीं डालते मसाले, कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध सौंफ सौंठ इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है वैसा वाला दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार। अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए, पनीर को उबालने के लिए और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है। एक बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकालकर सुखा लेना है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना है जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आंच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचा हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है। और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए और इसमें जीरा हींग दालचीनी लौंग हरी इलायची बड़ी इलायची ये सारे मसाले एक साथ डाल देने। कुछ सेकंड भी ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी, तब आंच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है, सूखे मसाले ना जलें। इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है
0: जी।
1: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद में दूध डालना है और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए। और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है और कढ़ाई को ढक देना है, धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से 1 चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है या मलाई डाल सकते हैं आप और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए और गर्मा गर्म ल्योदर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से
0: फिर भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोजमर्रा के खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहां मिलता है और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियां, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल जैसे कि आपने कहा इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताजा होता है, तो आमतौर पर इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों

0: इसी तरह से बनाया जाता है। सब्जी को आप हल्का सा तोड़कर या काटकर आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है उसमें आप इसको छोंक दीजिए और बस वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी हूँ,
1: ल्योदूर चमन
0: ल्योदूर चमन और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है। ये भी जैसे हम भाजी बनाते हैं ना, जो ताजी सब्जियां जिस तरह से थोड़े से मसालों के साथ में ऐसा डाल के उसी तरह से इसे पका लिया जाता है। और बस इन सब के साथ में चावल बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और गर्मा गर्मी सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं। और क्या होता है ना कि कई बार बहुत तेल मसाले वाला या लहसुन प्याज का कुछ खाने का मन ना हो तो इस तरह की हल्की फुल्की सब्जियां सभी बनाकर खा सकते हैं। और भाई खुशबू तो फैल रही है जायके की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो संगीत की मीठी मीठी सुगंध है, खुशबू है, वो भी फैल जाए।
0: बिल्कुल।

0: चंचल जी हमारे एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोजमर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीजें रखकर भूल जाती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती है, ऐसा कह रही है।
1: तो बस आप ख्याल पर उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना। और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहां बुलाने के लिए। यहां मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुंचेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूँ, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूंगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए। और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता है, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का जमाना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीजें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूं ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुंच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज्यादा ब्लड जा रहा है, ब्रेन में खून की नस फट गई है, तो ऐसे लेमैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलता है, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना, बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकेंड सवाल पूछा, क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, आंसर इज येस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो

0: हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं
1: जी।
0: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में। ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से एक मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे
1: जी।
0: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे अस्पताल ज्यादा हो रहे हैं, सिटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज्यादा होते पा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए।
0: करेक्ट, अच्छी है, बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज के लिए और इसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको, फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ, तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो, बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध गुस्सा, कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं, तो ये सब भी कारण हो सकता है क्या?
0: एक ही कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं वो कन्फर्म है बढ़ता ही है उस वक्त, तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का
1: जी।
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी जी।
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है
1: जी।
0: बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ न कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है, जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा, जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी, पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहे हैं। अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं, तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है, तो उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होते हैं, बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। तो कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश प्रयास किया जा सकता है?
0: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूं तो यहां तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन एमआरआई ऑलमोस्ट मुंबई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो, वो क्या सोचेंगे मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर

0: दिया, मुझे पैर में मोच आ गई, उसके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है, थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए, आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस है। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो
1: जी।
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयां और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं
1: जी। तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज होते हैं,
0: बहुत
1: तो इसका क्या संबंध
0: खून है? अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो, हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयां, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छा है, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है
1: जी। जी, तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है, मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए?
0: ये एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन और उसको तुरंत खा लो, तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज है। बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं, उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना। क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है। तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली और वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूं। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल, और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना?
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हम बोलते हैं जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो, वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले ही पता होना चाहिए। बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए, उससे भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है
1: जी,
0: वो एक साथ सब साफ हो जाता है
1: जी। जी,
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाए।
0: पसंद का, मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव साथिया तूने क्या किया बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम
1: जी। SP बालसुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे तो उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना दो महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना दो महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाते हैं। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार की?
1: सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, दो दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफी पेशेंट मान जाते हैं फैमिलीज, काफी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज

0: दो अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन, दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही सही था। बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी का जो आउटकम है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल बोल सकता हूँ
1: जी। और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए,
0: तो वो जो ये जो है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए। जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, बट जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है आप वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के तीन चार जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
1: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
0: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया है, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयां खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्राम, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूं खेल रहा हूं भाग रहा हूं, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं। तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, 2 साल 5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं।
1: जी,
0: तो इसलिए हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयां शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू। 2000 एकदम सेफ दवाइयां रहती है, मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो।
1: बिल्कुल, और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए, और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
1: जी सुनते हैं, कभी कभी फिल्म का गाना
0: जी हाँ
1: सुनते हैं ये।

0: रॉब साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। आई थिंक अभी भी जो भी न्यूरो, नॉट ओनली मुंबई, आई थिंक जहां पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी जी।
1: तो उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है तो नेट पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते।
0: बिल्कुल।
1: तो सारे हेडेक जो है उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी सिटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहे हैं। काफी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयां लिख दिया उसको, आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती है। पेशेंट को 10 दिन दवाई भेजो तो दर्द एकदम गायब हो गया, और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ, वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी भी ऐसा है, 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं। और दवाइयां ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े। कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयां जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
0: जी जी।
1: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है। तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
0: जी। सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है, और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह से?
1: एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया चश्मा, नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हुई, हम बोलते हैं रूट कनाल करवाना है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
0: इसकी वजह से सिर दर्द।
1: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल वो जाना है ब्रेन पे ही। काफी बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। दिक्कत है पेट की, पेट में जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों

0: से आराम हो जाता है।
1: जी
0: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूं। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज है, मैं लिख दूं 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोस कर सको।
1: जी जी,
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, न कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है,
1: भाप ले लो।
0: तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं, दैट इज हाफ इन्फॉर्मेशन।
1: जी, और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है,
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूं।
1: जी, और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे कम। तो इसलिए सिर दर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने के बजाय डॉक्टर से संपर्क कर।
0: वो जो 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके।
1: जी,
0: जैसे ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है। तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है। तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है, उसके लिए हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एब्सेंट माइंड होना या याददाश्त पर असर पड़ता है?
0: किस स्टेज पे आते हैं? काफी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
0: तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल आईसीएमआर जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है इसको हम अभी भी रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो पर उनके जो चलने का पैटर्न है डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहे हैं, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब।
1: अच्छा।
0: तो उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर ले। और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को?
0: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे।
1: जी,
0: बहुत ही फेमस सॉन्ग है वो।
1: जी, सुनते हैं ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।
0: जी,
1: है ये गाना।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है? ये
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही अच्छी चीज है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफी कम है। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है, ब्रेन ट्यूमर इज हार्डली 5-7%। तो इट इज ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से

0: में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफी कम है। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है, ब्रेन ट्यूमर इज हार्डली 5-7%। तो इट इज ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है
1: जी।
0: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। बट जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत ये है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे तो नंबर 40-50 हजार के आसपास है।
1: जी जी।
0: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और अचानक?
0: जैसे ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, नॉन
1: स्पेसिफिक आने वाली बीमारी।
0: करेक्ट। काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहे ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तो पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें, सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोले जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी में, वहाँ MRI छोड़े आपको न्यूरो के पास पहुंचना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो हर एक का MRI करना मुश्किल होता है।
1: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जिससे?
0: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेज नॉन कैंसर। तो ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो MRI देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत मेरे श्रोताओं को न पड़े तो अच्छा है। मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm, 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं। तो अगर वो मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 cm के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन, तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 cm छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके, तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी, तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का एक 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी, जो हम बोलते हैं 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टांके हैं सिर पे वो 2 हफ्ते बाद निकाल के, महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना खाना बाहर की लाइफ एक्टिविटी वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अंटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5-6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो

0: नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे, ये वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट आने या कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये दो तीन चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
1: लोट्स ऑफ फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई, हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
0: एक लक्षण है उसका। काफी बार हमने MRI किया, पेशेंट को फिट्स आया था, MRI करके देखे, MRI एकदम नॉर्मल है। तो MRI करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए। बट नॉर्मल MRI है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है
1: जी।
0: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का।
1: जी, जी।
0: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
1: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है, तो उसकी क्या लक्षण है?
0: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं।
1: ट्यूमर वही
0: है। तो बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है
1: जी।
0: जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए, कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है
1: जी। तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: MRI हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है,
1: और तो फिर
0: उसके हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ?
0: ऐसा जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहते हैं? सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है किसी को नहीं पता। जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लगा पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम हैं फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है, किस तरह की
0: स्ट्रोक? यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। बट ट्यूमर में संभव कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ न कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है, और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते।

0: तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समा वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है जो आसानी से मरीज ले सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन है, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है। फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज की दवाई खा रहा हूं, बीपी की दवाई खा रहा हूं, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े। तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी।
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज है नशा बंद कर दो, बहुत फायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों में कुछ भी फायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफी खराब चीज है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है। तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
1: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेंजी जो सुन रहे हैं और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद बात है।
0: तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है और सारे छोटे सिटी में भी काफी सस्ते में मिल जाते हैं, बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया। और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या ही होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है। तो इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए। जरा
0: हर पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है। तो बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी।
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किस से हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हार्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय नाइट टाइम है, तो उसमें फिर अदर देन दवाइयां बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी।
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयां भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी।
0: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन।
1: जी।
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग मॉडिफाई करना है, बट एक है कि दवाइयां इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी। एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता है, तो ये क्या कोई न्यूरो

0: न्यूरो
1: उस
0: रिलेटेड ही
1: प्रॉब्लम.
0: है, उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60+ एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगता है। तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलता है फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसा हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं। बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
1: जी, तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
1: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले,
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी,
3: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
4: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी याद।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं पेश कार्यक्रम विवरण।

आपको जानकारी दे दें, हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा की। पहले आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम। आज रात 10 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाईलाइट्स। विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 5:30 पर और एक बार फिर से रात 9 बजे से। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों का समय रहेगा शाम 7:30 से।

कार्यक्रम युवाणी प्रस्तुत करेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:05 पर, जिसके अंतर्गत सुनिएगा आज की बात पर चर्चा। विषय रहेंगे विश्व शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस और हमारे त्योहार और एकात्मकता। साथ ही सुनवाएंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 7:00, जिसके अंतर्गत होंगी कामकाज की बातें, बातचीत, लोक भजन, बाजार भाव और मौसम की जानकारी। और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे रात 10:20 से।

अब एक नजर हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 10 बजे और एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से अनुप्रसारित चिंतन सुनिएगा सुबह 6:05 पर, यहीं से 6:10 पर होगी वंदना। हमारे केन्द्र से रामचरितमानस गान का अंक प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम की तिनी बात सुनिएगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 6:50 पर और वातायन का समय रहेगा सुबह 7:20 पर।

दिल के जज्बातों से लबरेज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत प्रसारित करेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:10 पर और दोबारा सुबह 11 बजे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा सुबह 9

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम युववाणी।

आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में सुन रहे सभी मेरे साथियों को आपकी दोस्त शेफाली कलाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी आवश्यकता केवल किसी एक देश या समाज को नहीं बल्कि पूरी मानवता को है, जो है शांति। हर वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध न होने का नाम नहीं है। शांति का अर्थ है एक दूसरे के विचारों को सम्मान करना, मत भेदों को संवाद से सुलझाना और समाज में प्रेम, सहयोग तथा सद्भावना बनाए रखना। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में शांति स्थापित करना सरकारों या बड़े संगठनों की जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तव में शांति की शुरुआत हमारे अपने व्यवहार से होती है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, जब हम गुस्से में भी संयम रखते हैं, जब हम किसी की गलती को माफ करना सीखते हैं और जब हम जाति, भाषा, धर्म या विचारों के अंतर के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब हम शांति की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं। आज के समय में तकनीकी ने दुनिया को बहुत करीब ला दिया है। हम कुछ ही सेकंड में किसी से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर किसी अफवाह को बिना जांचे बढ़ाना, किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या छोटी सी बात को विवाद में बदल लेना, ये सब हमारे समाज की शांति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शब्दों का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करेंगे, ना कि तोड़ने के लिए। दोस्तों, कहा भी गया है कि शांति बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमारे भीतर जन्म लेती है। अगर हमारे मन में शांति होगी तो हमारे शब्दों में भी शांति होगी और हमारे व्यवहार में भी। युवाओं की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की शक्ति भी है। यदि युवा संवाद, सहिष्णुता और सहयोग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देंगे। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर हम केवल शांति की बात न करें बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों में उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। किसी नाराज व्यक्ति से प्रेम की बात करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी के विचारों से असहमति हो तो उसका सम्मान करें और जहां संभव हो विवाद को बढ़ाने के बजाय संवाद का रास्ता चुने, क्योंकि शांति कोई दूर का सपना नहीं। शांति हमारे शब्दों में है, हमारे व्यवहार में है और हमारे छोटे छोटे निर्णयों में है। इसी सकारात्मक विचार के साथ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं गीत व संदेश।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, इस संदेश के साथ हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसे समझना और उसके प्रति संवेदनशील होना हम सभी के लिए जरूरी है, जो है अल्जाइमर रोग। दोस्तों, हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर और उससे जुड़े स्मृति संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे प्रभावित लोगों तथा उनके परिवारों के प्रति समझ और सहयोग की भावना विकसित करना है। दोस्तों, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे प्रभावित हो सकती है। कई बार व्यक्ति रोजमर्रा की बातें भूलने लगता है, परिचित चीजों या लोगों की पहचान में कठिनाई महसूस कर सकता है या सामान्य कामों में भी परेशानी होने लगती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्जाइमर से प्रभावित व्यक्ति केवल अपने भूलने की समस्या नहीं है, वह भावनाओं, अनुभवों और रिश्तों से जुड़ा एक पूरा इंसान है। ऐसे में परिवार और समाज का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें उनके साथ धैर्य से बात करनी चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें सम्मान तथा अपनापन देना चाहिए। दोस्तों, हम युवाओं की भूमिका भी यह महत्वपूर्ण है। हम अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताकर, उनकी बातें सुनकर और जरूरत पड़ने पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उनकी सहायता कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी व्यक्ति में लगातार याददाश्त या व्यवहार से जुड़ी परेशानी दिखाई दे तो परिवार को योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस विश्व अल्जाइमर दिवस पर आइए हम एक ऐसे समाज बनाने का संकल्प लें जहां भूलने वाले व्यक्ति को भुलाया न जाए। किसी की याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन उसके प्रति हमारा प्यार, सम्मान और संवेदनशील कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस चर्चा के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं आगे गीत व संदेश।
6: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
7: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
8: बन गया बजट?
7: हाँ,
8: 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले।
8: ना, पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और
8: नहीं, पहले बजट बनाओ।

0: छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
1: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
5: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, इस गीत के साथ कार्यक्रम में हम हमारी अगली चर्चा को जारी करते हैं। दोस्तों, हमारी अगली चर्चा है हमारे त्योहार और एकात्मकता। दोस्तों, भारत को अगर करीब से समझना हो तो हमारे त्योहारों को समझना बहुत जरूरी है। हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम है। यहाँ अलग अलग त्योहार अलग अलग परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों की एक खूबसूरत समानता है कि ये हमें जोड़ते हैं। जैसे दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश की जीत का संदेश देती है, होली हमें प्रेम और आपसी भाईचारे के रंग में रंग देती है, ईद हमें मिलजुल कर खुशियां बांटने और भाईचारे का संदेश देती है, क्रिसमस प्रेम और करुणा की भावना जगाता है, तो गुरु पर्व सेवा और मानवता की प्रेरणा देता है। हमारे त्योहारों की सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब हम केवल अपने त्योहार नहीं बल्कि दूसरों के त्योहार में भी खुशी से शामिल होते हैं। किसी के घर मिठाई लेकर जाना, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना और मिलकर खुशियां मनाना, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां बढ़ सकती है, तब त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली ताकत एक दूसरे से जुड़ने में है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए दूसरों की आस्था और परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। तो आइए इस बार त्योहारों के साथ एक संकल्प भी ले, हम भेदभाव नहीं भाईचारा बढ़ाएंगे, दूरिया नहीं रिश्ते बनाएंगे और अपनी विविधताओं में छिपी एकता को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे त्योहार सिर्फ कैलेंडरों की तारीख नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी भावनाएं और हमारी एकात्मकता के उत्सव है। इसी सुंदर संदेश के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम युवाणी से विदा लेने का। इजाजत दीजिए आपकी दोस्त शिफाली कलाल को कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

डब्बू मलिक के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे थे फैज अनवर ने। फिल्म का नाम मैंने दिल तुझको दिया। और अब आपको सुनवा रहे हैं रिश्ता कागज का। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ।

तराने नए पुराने में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत तैयार किया है ए आर रहमान ने। आवाजें हैं ए आर रहमान और चिन्मयी की।

साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के

0: कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए कार्यक्रम का शेष भाग सुनते हैं। आपको सुनवा रहे हैं मृत्युदंड फिल्म का गीत। इसे गाया है उदित नारायण ने और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर के बोल और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: रस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो भी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अनुराधा पौडवाल की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये गीत हमने लिया है नगीना फिल्म से।

साल के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं जाबांज फिल्म का गाना, जिसे गाया है सपना मुखर्जी ने। गीत के बोल इंदिवर ने लिखे और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी।

आइए अब सुनते हैं त्रिदेव फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। यहीं से होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अजमेर, पाली, अलवर और उदयपुर नगर निगम में भाजपा के महापौर, वहीं बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का मेयर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर से लागू होगा। राज्य में मॉनसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल, अगले 4-5 दिन ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार। और बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी पर प्रदेश भर में आस्था का सैलाब।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में हुए चुनाव में से 301 के नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा, जिसने 197 निकायों में अपना बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। दूसरी ओर 94 निकायों में कांग्रेस के बोर्ड बने हैं। इसके अलावा 7 स्थानों पर निर्दलीय, वहीं आरएलपी, आप तथा सीपीआईएम के प्रत्याशी एक एक स्थानों पर अध्यक्ष चुने गए हैं। आज आए 5 नगर निगमों के नतीजों में भाजपा 4 निगमों पर काबिज हुई है, वहीं कांग्रेस बीकानेर में बोर्ड बनाने में सफल रही है। अलवर, उदयपुर, अजमेर तथा पाली में भाजपा के मेयर निर्वाचित हुए। उदयपुर में पारस सिंघवी, अजमेर में अनामिका शर्मा, अलवर में सुमनलता अग्रवाल तथा पाली में नमिता बुबकिया मेयर बने हैं। वहीं बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस के अमित कल्ला महापौर चुने गए हैं। भरतपुर और भीलवाड़ा में पहले ही भाजपा के महापौर निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं। वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में महापौर पद के लिए 25 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर विश्वास जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंचायत चुनावों में भी भाजपा को प्रचंड जीत हासिल होगी।
1: जो परिणाम सामने आए उसमें राजस्थान की जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को राजस्थान की जनता ने स्वीकार किया और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो विकास के काम किए

0: उस पर उन्होंने मोहर लगाई। अभी जैसे 7 निगमों के हुए उसमें से 6 में हमें विजय दिलवाई, इसी प्रकार से नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी हमको बहुत खुल करके और जनता ने आशीर्वाद दिया है।
1: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर इन चुनावों में पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षदों को पार्टी के विरुद्ध कर भाजपा ने लोकतांत्रिक परंपराओं पर प्रहार किया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव लड़ेगी। आज जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राज्य संगठन महासचिव विश्वेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ये जानकारी दी। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्र में काम करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। योजना से जहां आसान ऋण के माध्यम से आजीविका को सहारा मिला है, वहीं डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा मिल रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
2: पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को बिना गारंटी आसान और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत पात्र विक्रेताओं को कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से ऋण दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने पर अगले चरण में अधिक राशि का ऋण और ब्याज में छूट का लाभ मिलता है। फल, सब्जी, चाय, नाश्ता और अन्य सामान बेचने वाले पात्र विक्रेता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यूपीआई और डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देने के लिए कैशबैक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इस तरह पीएम स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्र के छोटे कारोबारियों को संस्थागत ऋण से जोड़ते हुए उनकी आजीविका और आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रही है। न्यूज डेस्क से सलीहा गाजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लिए छुटपुट स्थानों पर कल हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान से भी 19 सितंबर से मॉनसून की विदाई शुरू हो चुकी है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस बीच कई स्थानों पर गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। जैसलमेर में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड हुआ। विभाग के अनुसार आज सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली और बांसवाड़ा सहित 10 जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट है। सलूम्बर में आज कुछ देर झमाझम पानी बरसा। जयपुर में आज लोक मंथन यात्रा निकाली गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जलेब चौक से यात्रा को रवाना किया। इसका आयोजन हम भारत के लोग थीम पर किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन किया। वहीं खिलाड़ियों की ओर से किए गए खेल प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहे। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये यात्रा गौरवशाली लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास है। लोक मंथन 2026 का मुख्य आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक जयपुर में होगा।
1: उद्देश्य ये है कि जितने अपने लोक कलाकार हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे छोटी छोटी रीति रिवाज होती हैं और परंपराएं होती हैं, ये सब और हमारी राजस्थान की संस्कृति, भारत की संस्कृति को पूरे आगे तक हम लोग कैसे ले जा सकते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें बहुत ही बड़ा आयोजन होगा और इसमें पूरे विश्व भर से बहुत सारे अतिथि भी आएंगे, बहुत सारे स्पीकर्स भी आएंगे और इसमें हर प्रकार से राजस्थान के लोक कलाकार, लोक नृत्य, हमारे आर्ट क्राफ्ट सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा।
0: लोक देवता बाबा रामदेव का जन्मोत्सव आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में रूनीचा धाम पर भादवा मुख्य मेला भरा है। लोक देवता के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। बाबा की समाधि के दर्शन के लिए विभिन्न धर्मों के लोग मेले में आते हैं। उधर चूरू के प्राचीन मंदिर में भी मेले का आयोजन किया गया है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की आराधना का पर्व तेजादशमी भी आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोटा में वीर तेजाजी के थानक पर मेला भरा है। इसके अलावा अजमेर के लीडी, चित्तौड़गढ़ के मंडेसरा, भीमगढ़, सवाईमाधोपुर के समुद्रपुरा, बूंदी के कापरेन सहित विभिन्न स्थानों पर वीर तेजाजी के मेले भरे हैं और भजन संध्याओं सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन रखे गए हैं। नागौर जिले के खरनाल में वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर भी मुख्य मेला आज भर रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीसी के माध्यम से विभिन्न जिलों के परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी और उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान संपर्क को नेक्स्ट जेन जन संपर्क के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए आम लोगों और शासन के बीच संवाद को प्रभावी बनाया जा रहा है।
2: जैसे आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार यहाँ जनसंपर्क केंद्र पे आए थे, 9 बार आए थे और बहुत कटिबद्ध हैं कि सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़े, सिटीजन का ग्रीवेंस रिड्रेसल समयबद्ध तरीके से हो और इफेक्टिव, मीनिंगफुल और क्वालिटेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल के प्रति सारे प्रयास किए जाने के उनके निर्देश हैं।
0: आज विश्व शांति दिवस है। दुनिया में युद्ध और हिंसा की रोकथाम तथा शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर शुरू किए गए इस दिवस पर हर साल विभिन्न संस्थाओं की ओर से शांति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विश्व शांति दिवस के मौके पर अहिंसा, युद्ध विराम और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम रखे जाते हैं। इनके जरिए लोगों को संवाद और सहयोग से विश्व शांति की भावना बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाता है। इस वर्ष की थीम शांति में निवेश करें, हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर दिन रखी गई है। दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आज के दिन शांति मार्च, शैक्षिक कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल आयोजन हो रहे हैं। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: राजधानी जयपुर में आज से पब्लिक

0: इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडियन स्टेट्स विषय पर 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें सार्वजनिक निवेश के बेहतर प्रबंधन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के बारे में मंथन किया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, ऐसे में उनका समय पर पूरा होना जरूरी है, जिससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए निवेश का ज्यादा से ज्यादा फायदा आम लोगों और अर्थव्यवस्था को मिले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अजमेर, पाली, अलवर और उदयपुर नगर निगम में भाजपा के महापौर, वहीं बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का मेयर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर से लागू होगा। राज्य में मॉनसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल, अगले 4-5 दिन ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार। और बाबा रामदेव जयंती और तेजादशमी पर प्रदेश भर में आस्था का सैलाब। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खां कलर ने तैयार किया है। पिछले दिनों जालौर जिले में नगर निकाय चुनाव हुए। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए विधिक जागरूकता प्रतियोगिताएं और स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियां हुई। वहीं कम बारिश के कारण किसान फसलों को लेकर चिंतित हैं। इस दौरान जिले में शिक्षक सम्मेलन, खेल प्रतियोगिताएं और कृष्ण जन्माष्टमी तथा गणेश चतुर्थी के धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। जिले में स्थानीय निकायों के चुनावों के तहत पार्षद पद के लिए मतदान और मतगणना संपन्न हुई। नगर परिषद जालौर में 76.21%, नगर पालिका आहोर में 69.64%, सायला में 66.78%, भीनमाल में 76.65% और साचौर में 76.63% मतदान हुआ। जिले की 1 नगर परिषद और 4 नगर पालिकाओं में 165 वार्डों के लिए मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोट डाले। इसके बाद मतगणना के नतीजे आए। भाजपा को 82, कांग्रेस को 50 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 33 सीटें हासिल हुई। जिले में 17 सितंबर से विकसित भारत जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला अस्पताल और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल जालौर में जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावड़ी ने रक्तदान शिविर की शुरुआत की। अब तक 165 यूनिट रक्त जिले में एकत्रित कर लिया गया है। अभियान के तहत 1000 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत स्कूलों में चित्रकला, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। स्कूलों में स्वच्छता से संबंधित गतिविधियां हुई। अभियान के तहत 17 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जालौर के विद्यार्थियों के लिए पिछले दिनों विधिक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे के तहत आयोजित किया गया। जिला और सेशन न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने विद्यार्थियों को अनजान लोगों से सावधान रहने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल के बाहर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर अनजान लोगों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। वहीं बडनवाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। जिले में इस बार बारिश कम होने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। खेतों में बाजरा, मूंग, मोठ और ग्वार की फसलें मुरझाने लगी हैं। किसानों का कहना है कि बारिश की कमी से फसलों पर असर पड़ रहा है। पशुओं के चारे को लेकर भी उन्हें चिंता है। जिले में कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के पर्व श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाए गए। विभिन्न स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिरों में खासी रौनक रही। लोगों ने उपवास किया, भजन कीर्तन के दौर चली। रात 12 बजते ही हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भक्तों ने प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना की गई। घरों में गणपति की स्थापना की गई। कई जगह विशेष पंडाल बनाकर गणपति स्थापना हुई। यहां रोजाना पूजा अर्चना के कार्यक्रम हो रहे हैं। कई स्थानों पर शोभा शोभा यात्राएं।

0: निकाली गयी। जालौर में दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित हुआ, इनमें जिले के शिक्षक शामिल हुए। सम्मेलन में शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने 17 सितंबर को जालौर का दौरा किया। पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने महिला और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने थानों में आने वाले लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करने और संज्ञेय अपराध में तुरंत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। जालौर जिले के जेरण स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 23 सितंबर तक चलेगी। इसमें जिले के अलग अलग क्षेत्रों से टीमें शामिल हुई हैं। इसके साथ ही जालौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, अजमेर पाली अलवर और उदयपुर नगर निगम में भाजपारा महापौर, बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस रो मेयर। भारत और न्यूजीलैंड बीच मुक्त व्यापार समझौता।

भारत न्यूजीलैंड बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 20 अक्टूबर में लागू हैला। राज्य में चौमासारी बिरखा लगभग बंद हुई। आवता 4-5 दिन घनखर हल्का माय मौसम सूखो रहन रा आसार। हर बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी रे मौके राज्य में आस्थाओं भया जात्रु उमड़िया।

समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश रा 309 नगरीय निकायों में भी चुनाव आयु 301 रा नतीजों रो ऐलान करती उचियो है। भारतीय जनता पार्टी 197 निकायों में बोर्ड बनावन में कामयाबी हासिल कीनी, जबकि 94 निकायों में कांग्रेस रा बोर्ड बनिया है। इस आगे 7 ठाणा निर्दलीय, जबकि आरएलपी आप सीपीआईएम रा उम्मीदवार एक एक ठाण अध्यक्ष चुनी चिया। आज ऐलान करी जिया 5 नगर निगमों रा नतीजा माए भाजपा 4 निगम माए काबिज हुई है, जबकि बीकानेर माए कांग्रेस बोर्ड बनावन माए सफल रही। अलवर उदयपुर अजमेर और पाली माए भाजपा रा महापौर चुनी चिया। उदयपुर माए पारस सिंघवी, अजमेर माए अनामिका शर्मा, अलवर माए सुमन लता अग्रवाल और पाली माए नमिता बुबकिया मेयर चुनी चिया। बीकानेर नगर निगम माए कांग्रेस रा अमित कल्ला महापौर चुनी चिया है। भरतपुर और भीलवाड़ा माए पहली भाजपा रा महापौर निर्विरोध चुनिया जा चुका है। जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम माए महापौर ओहदा सारू 25 सितंबर में वोट पड़ेला और वही दिन नतीजा रो ऐलान करियो जावेला। नतीजा पाछे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ जयपुर माई खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का कहो कि प्रदेश री जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सोच मत है भरोसो जतायो है। दूजी कानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राज्य री भाजपा सरकार मत है ये चुनाव माए पुलिस और प्रशासन रा बेजा इस्तेमाल रो आरोप मांडियो। वे कहो के कांग्रेस रा पार्षदा ने पार्टी रे खिलाफ कर और भाजपा लोकतांत्रिक परंपरावां माथे वार किन्नो है। आम आदमी पार्टी आखर राज्य माए पंचायती राज चुनाव लड़वारो ऐलान किन्नो है। पार्टी रा राज्य संगठन महासचिव

विश्वेंद्र सिंह आज जयपुर में खबर नवीसा से अगे बातचीत रे दौरान ओ ऐलान कीनो। भारत और न्यूजीलैंड बीच मुक्त व्यापार समझौतो एफटीए 20 अक्टूबर ने दशहरा रे मौके लागू भेला। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में राखी जा एक सम्मेलन में आ जानकारी दीनी। वे कहो के ई करार रातेत न्यूजीलैंड रा बाजार में बेचन सारू भारत जावन वाला सामान मत है कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेला। श्री गोयल कहो के सरकार दोनों देशों बीच आवता चार पांच साल में सामान और सेवाओं जुड़िया कारोबार ने दोगुनो कर करीब 35,000 करोड़ रूपया लेवल तई पुगावन री कोशिश कर रही है। ई करार कपड़ा चमड़ा जूता इंजीनियरिंग उत्पाद दवाइयां खेतीबाड़ी और खान पीन में जुड़िया प्रसंस्कृत सामान समेत न्यारी न्यारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी हल्का में काम करने वाला रेहड़ी पटरी वाला सारू माली तौर खुदरे पान उबा भेवन री दिशा में मददगार साबित हो रही है। इन योजना रा तहत मिलने वाला आसान कर्ज रे जरिए काम कमाई ने सहारो मिलियो है और डिजिटल लेन देन ने बढ़ावो मिल रियो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान बनाई सुन सको हो। राज्य में चौमासारी बिरखा लगभग बंद हो गई है। हालांकि कोटा और उदयपुर संभाग में आज कठे कठे हल्की बारिश रा आसार है। राज्य रा उगनी हल्का में घनखर ठोणा आवता चार पांच दिन मौसम सूखो रहवण की संभावना है जबकि आतुनी हल्का में 19 सितंबर चौमासारी बिरखा करीब करीब बंद हो गई है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में घनखर ठोणा आवता चार पांच दिन मौसम सूखो रहवण री संभावना है। इन बीच कई ठोणा गर्मी और उमस रो असर बद गयो है। जैसलमेर में दिन री बगत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम महकमो आज सवाई माधोपुर कोटा करौली और बांसवाड़ा समेत 10 जिला में बायरो बाजन सागर बिरखा सारू चेतायो है। सलुंबर में आज थोड़ी देर ताई पानी बरसियो। जयपुर में आज लोक मंथन यात्रा निकाली ची। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जलेब चौक यात्रा में रवाना कीनी। हम भारत के लोग मुद्दा माथा निकाली जी ई यात्रा रे दौरान लोक कलाकार पारंपरिक नाच गान रो दर्शाव कीनो। खिलाड़ियों कानियों बताई जिया खेल प्रदर्शन माथे सगा री नजर रही। ई मौके खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो के आ यात्रा बेहतरीन लोक परंपरावां सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता रा मूल्यां ने जनता ताई पुगावण री सार्थक कोशिश है। लोक मंथन 2026 रो खास आयोजन 4-6 दिसंबर ताई जयपुर में होला। लोक देवता बाबा रामदेव री जयंती आज आखा राज्य में हरख उमाव सागे मनाई जा रही है। जैसलमेर जिला रा रामदेवरा के नैरोणी चा धाम में खास भादवो मेलो भर रियो है जिनमें शामिल हुए वंसारू मोटी तादाद में जातरू पूग रिया है। बाबा री समाधि रा दर्शन सारू न्यारा न्यारा धर्म मानबा वाला लोग आवे है। चूरू रा जूना मिंदर में मेलो भर रियो है जिनमें सवारे उन्हीं जातरुआ रो तंतो लग्योड़ो है। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज री आराधना रो पर्व तेजा दशमी आज श्रद्धा भाव सागे मनायो जा रियो है। कोटा में वीर तेजाजी रा थानक माथे मेलो भर रियो है। इस आगे अजमेर रा लीडी चित्तौड़गढ़ रा मंडेसरा भीमगढ़ सवाई माधोपुर रा समुद्रपुरा और बूंदी रा कापरेन समेत न्यारी न्यारी ठोड़ा तेजाजी रा मेला भर रिया है और भजन संध्या समेत भांत भांत रा धार्मिक कार्यक्रम रख्या जा रिया है। नागौर जिला रा खरनाल में वीर तेजाजी री जन्म री ठौड़ी आज खास मेलो भर रियो है। आज विश्व शांति दिवस है। दुनिया में युद्ध और हिंसा री रोकथाम सागे शांति और भाईचारा ने बढ़ावो देवन सारू ओ दिन मनायो जावे है।
संयुक्त राष्ट्र संघ री पहल शुरू।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम मैंडिक 1.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त शाम के 7 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम हमारा वाला सब किसान भाई ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाई अपने गांव में पशुपालन है ई खेती नो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों है और अपने सब जाना के अपने पशुपालक भाई ने घर में गाय भैंस बहुत अच्छी संख्या में रहे और आनंद की अपने डेली गोबर भी मिले है और आज ये गोबर है ये अपने पल्ले ईंधन जैविक खाद और अतिरिक्त बचत नो साधन बनी सके तो आ हरती थी सके।

0: याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: किसान भाइयों, आज आपड़े हाथे राखो ना रामजी भाई है। और रामजी भाई देखिए, आपड़े बात कर रहे हैं आजकल जे सरकार नो ने कृषि विभाग नो और सब जगह जई विषय ऊपर वधार जोर आला है ने बात थी रही है, एना विषय ऊपर आपड़े बात करीने जाना कि भाई जैविक खेती है ई आज करवी केम आवश्यक है और जैविक खेती ना लाभ हूं है और एना हूं महत्व है। तो रामजी भाई, आप हमारा किसान भाई ने आना कार्यक्रम ने जो हामी रहे इन्हें आप केम के जैविक खेती कुछ समय थी की करी रहो, तो जैविक खेती ना लाभ हूं है एनो हूं महत्व है और सरकार ना विभाग के मानो ऊपर जोर आली रू है एने ऊपर आप अपना जो विचार है ई साझा करो।
3: सबने राम राम। जैविक खेती में बात आप करी या थको आज सोरा माते तो आज थकी 40-50 वर्ष पहले सरकार है ई भारत में जनसंख्या जो वधी रही थी एना लीधे देश में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता ने लईने हरित क्रांति नो जे काम सरकारे हाथ में लीधु भारत सरकारे एनी थकी जे रसायनिक उर्वरक है ने दवाई है ये सब चीजें आवी अच्छी बात है, तात्कालीन एना समय में अपना आवश्यकता भी थी अपना देश में। लेकिन धीरे धीरे धीरे खेती जे मूल व्यवस्था थी एना में थोड़ो सो दिक्कत पैदा थी कि धीरे धीरे रासायनिक तत्व है एना नी मात्रा है ई धीरे धीरे वधार थवा मांडी। एने थकी भूमि में जे जैविक घटक हता, देशी खातर हतो, पनवेर हती, जे आपणे ठोरडा रही जाता था एने आपणे गरवता था, ई जे प्राकृतिक रूप थकी विघटित थईने तूटीने पाणी हाथे धूप हाथे गलीने जे एने में जीवांश नो काम करता था एनी उत्तरोत्तर है दाड़े दाड़े दाड़े दाड़े एना घटक नी कमी आवा थकी धीरे धीरे धीरे धीरे भूमि नो जो उपजाऊपन है या कृषि मित्र जे कीट है एने से एक सहज सरल अने तरल रूप में जे एनो भोज्य पदार्थ एनी मिट्टी में मलत बजाय कार्बन प्राकृतिक कार्बन जे बनावता था ई धीरे धीरे घटवा मांड्यो ने साथ ही एने हाथे हाथे खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि थई तो किसान भी थोड़ो सो बढ़ती व्यवस्था और बढ़ते हमारे पूरे जो आलो अपने भौगोलिक मॉडल है एना मॉडल विकास मॉडल में केन के है एनी सोच में भी थोड़ो सो ई प्रवृत्ति आवी ने तुलनात्मक रूप थकी है ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए एना तरह तरह ना सरकारी भी एना कालक्रम में है एना कालखंड में है एनी गतिविधि ने मतलब प्रोत्साहित करी।
2: हाँ, खाद्यान्न की कमी थी और अपनी जो आबादी थी इनकी आबादी ने आवश्यकता ने पूर्ति करवा बोले रासायनिक खाद और उर्वरक नो जो उपयोग है एने बढ़ाव पर जोर आलू सरकारे और इनकी बचत की एना समय में और आज भी आपने दिखी रहा कि भाई जे अपने खेती में औसत जो उत्पादन है ये बढ़ी गयु पर एनो लगातार और अंधाधुंद उपयोग करवाते कि अपनी जे खेतर नी जे उपजाऊ क्षमता है या इनकी जो उर्वरा शक्ति है इनमें कमी आएगी।
3: बराबर।
2: तो अवे केम के आपणे दिखी रहा कि धीरे धीरे आपणे खेतर ने जे मिट्टी है ये रामजी भाई कठोर खाती जा रही है ना, भटारगी थी गई मिट्टी और पहले एकदम मुलायम थी, भुरभुरी थी, और से भी आपण हाकता था हाकाई जाता तो पर आज ट्रैक्टर थी भी आपण हाक कल्टी थी की तो भी हाकाई नतरी
3: अपने मानता पड़े धरती माता भी पीड़ित थे एनु अगर लेबोरेटरी जांच करावो तो तमाम तरह की भारत सरकार की संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है ये चेतावनी आली थी रही थी कि अभी भी हदरवा समय हदरी गया तो आवा समय में अपने आनी भयावहता थकी एक रासायनिक खाद ने रासायनिक चीजें थकी एना दुष्प्रभाव मानव जीवन माते ने हिता परिस्थिति की तंत्र माते पड़ेगा इन्हें थकी बचवा जागवा अभी भी समय है तो एनी चीजें ने लईने से भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकार है जैविक खेती जागरूकता अभियान लईने आवी रही है
2: और जैविक खेती ऊपर
3: जैविक खेती ऊपर खूब फोकस करी रही
2: जैविक खेती है वो
3: जैविक खेती नो मतलब ये है कि मोटा मोटी जो जे वातावरण में आप रही रहा है ना वातावरण में जे भी

0: आज रूप में जे भी फसलें पनपी सकी एनी है ई एनी जलवायु में देशी तरीके थे कि आपने जे वगड़ी में कहवानी के देशी तरीके थे कि जे चीजें पैदा थई सके वना खातरे ने वना दवाई थकी एनो एक विकल्प है कि देशी जे आप देशी गोबर है गोधन थकी जे आप गोधन देशी गोबर है देशी खाद है अने हाथे हाथे वर्तमान में जे तरह तरह की टेक्नोलॉजी है एने में अपनी बायो जैविक दवाई भी आवी गई तो रासायनिक चीज थकी अपने जैविक दवाई जे के वनस्पति थकी अर्क आए रस आए थकी बनेगी थकी तो एटली प्रमाणित है भारत सरकार ने विभिन्न संस्थाएं प्रमाणित कर बाजार में उतारी रही है तो एक तरह की उत्पादन एक वक्त थोड़ा सो घटेगा परंतु धीरे धीरे बे तीन साल उत्तरोत्तर अगर आप चीजों प्रयोग करूंगा तो जे आज वर्तमान में रासायनिक खाद रासायनिक दवाई प्रयोग थकी किसान ने जो उत्पादन मिलू है पासु है धीरे धीरे खेतर ने भी जमीन की आदत बड़ी जगह ने कृषि मित्र कीटों की जो संख्या है ई जैव जैव जैविक घटक मलवा थकी एनी संख्या वधेगा तो अपने पासा है ई स्थिति में आवी जंगा लेकिन एना थोड़ा सा समय हारू जे धैर्य धारण धीरज राखवानी आवश्यकता है धरती पुत्र ने ई थोड़ो सो अगर काम थी जाए तो बे तीन साल बाद है ई हर तरह की गुणवत्ता युक्त अपने फसलें मिलेगा गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न मिलेगा ने एने थकी जे चारो है वनस्पति है जानवर खाए तो एने थकी जे आपणो दूध दूध दुग्ध उत्पादन है फल उत्पादन है
1: बराबर
0: इना सब चीजों की जे विषाक्तता आवी गई एक तरह की मोटा मोटा रूप में कम बजार की बात नहीं करे पर मोटा मोटी तो इन्हें जो प्राकृतिक स्वरूप है ये आएगा तो अपना खान पान में हर बात जो सुधार आएगा तो परिणाम है आवा वाला दस बारह साल में निश्चित रूप थकी देखागा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा एनो तो ज्यादा थकी ज्यादा किसान भाई ने है ई जैविक खेती की तरफ आबूजू है ने अवड़े राज्य सरकार आप एक अच्छो काम भी करू है राजस्थान की राज्य सरकारे के बे जोड़ी बड़द माते अगर किसान ने है तो एक 30,000 रूपया आली रही थकी है तो आ एक तरह थकी मतलब बे तरह नो फायदो मिली रो
1: बराबर
0: नहीं तो खेती करवा अपने बड़द राखवा से थोड़ा एक हाथ किसान बढ़ावी रो तो एक हाथ सरकार बढ़ावी रही है पीलियाडे कृषि विभाग और बागवानी विभाग जो है एक मिशन ना रूप में है ई मतलब जैविक खेती जैविक फसल उत्पादन जैविक फल उत्पादन की तरफ है ई प्रोत्साहन करी जा सकें शेड नेट में ने ग्रीन हाउस जे बड़ा बड़ा बनावी ले जे कि 80-90% जनजाति क्षेत्र में अनुदान माते मिली रह सकें एना में भी इन ध्यान ही है कि ज्यादा थे कि ज्यादा जैविक दवाई नो उपयोग थाय जैविक खाद नो उपयोग थाय ने एनी गुणवत्ता अने लागत बे है कि एने थे कि किसान नो केन के सकारात्मक रूप थी विकास भी थाय ने आम व्यक्ति है एनी पहुंच में एक अच्छो खाद्यान्न अने अच्छा फल अने अच्छी सब्जी आवे एवो एक समावेश एक समावेशी प्रयास है अने बहुत अच्छो प्रयास है आलो सरकार नो
1: तो रामजी भाई कही सके सरकार जैविक खेती में लईने किसान भाई ने जागरूक करवा बदले काफी प्रयास कर रही है किसान भाई ने भी हवे आना समय नी मांग है कि आप रासायनिक खाद और उर्वरक दवाई है इन्हें देखी अपने खेतर ने अपने मुक्त कर मिट्टी ने मुक्त करी और जैविक खेती है इन्हें अपने अपनावो एना वी आप रुझान अपने दिखाड़ी हमें आवश्यकता है तो रामजी भाई आप जैविक खेती लईने अपना विचार है अमरा किसान भाई हाथ साझा कर इन बल्ला आपनो धन्यवाद ने हवे केम के हाजनो समय है तो पहला आप एक भजन हमरो और भजन बाद आगाड़ी बात करो।

0: इतनी जो मिट्टी है इन्हें गुणवत्ता काफी प्रभावित थी है। आवा में खेतर में जैविक खाद नो उपयोग करवो मिट्टी ने सेहत ने बढ़ावी ने रखवा बोले बहुत आवश्यक है और आ जैविक खाद नो उपयोग मिट्टी की सेहत ने बढ़ावी ने रखवा में उपयोगी साबित था। तो आटले आपने समझू है कि आ जैविक खाद है जिन्हें केचुआ खाद भी कहे या अंग्रेजी में जिन्हें वर्मी कॉम्पोस्ट कहो आ है हो तो किसान भाइयों केचुआ खाद तैयार करवा में केचुआ की मदद थे कि गोबर फसल ना अवशेष सूखी पत्ती ने बीजे जो जैविक पदार्थ है इनमें विघटन करावे। कुछ विशेष प्रकार ने जो केचुआ है ये जैविक पदार्थ ने बहुत जल्दी विघटित करवा में मदद करे है और आने थे कि पोषक तत्व थे कि भरपूर खाद तैयार था है। केचुआ खाद ने लाभ में अगर आप बात करें तो आनो पहलो लाभ है मिट्टी में जो उर्वरता है इनमें सुधार था। केचुआ खाद पौधे बल्ले जो आवश्यक पोषक तत्व है और जे जैविक पदार्थ रहे इन्हें थे कि आप भरपूर रहे और आने नियमित में उचित उपयोग करवाते कि मिट्टी ने जे भौतिक ने जे जैविक गुणवत्ता है इन्हें सुधारवा में मदद मिले है। एमने मेनो जे बीजो लाभ है मिट्टी की संरचना ने बेहतर करवानो तो केचुआ खाद ने उपयोग थे कि मिट्टी में जे जैविक पदार्थ बढ़ावा में मदद मिले है। आने थे कि मिट्टी वधारे भुरभुरी थी जाए और पौधों ने जड़ने विकास में बल्ले बहुत अच्छो वातावरण नो निर्माण करे है। तीसरो लाभ आनी जे पानी धारण करवाने की क्षमता है कि किसान भाई देखो जैविक पदार्थ थे कि भरपूर मिट्टी पानी ने बेहतर तरीका थे कि धारण करी सके और आने थे कि सिंचाई ने पानी नो बहुत प्रभावी उपयोग करवा में भी मदद मिले है। रासायनिक उर्वरकों पर जो निर्भरता है ये भी कम था है क्योंकि केचुआ खाद खेतर में जैविक स्रोत के रूप में अपने इन्हें सम्मिलित कर शामिल कर तो आ पोषक तत्व ने प्रबंधन में सहायक सिद्ध था है और संतुलित पोषण व्यवस्था बनावा में आने थे की मदद मिले है। किसान भाई वाली बात ध्यान रखू है कि केचुआ खाद रासायनिक उर्वरक नो हर स्थिति में पूरी तरह की विकल्प नहीं लेकिन मिट्टी नु परीक्षण ने फसल की आवश्यकता अनुसार उचित पोषण प्रबंधन अपना वो बहुत आवश्यक है। केचुआ खाद ने पांचवा लाभ ने अगर बात करो तो कृषि जो अवशेष है इनो उपयोग था है जिनमें आप जाने के जो फसल ना अवशेष है सूखी पत्तियां हैं और पशुओं नो गोबर आवी जे जैविक सामग्री नो उपयोग केचुआ खाद बनावा में जे करी सके आने थे कि कृषि ने जो अवशेष है इन्हें उपयोग बहुत बेहतर तरीके थे कि आनु प्रबंधन थी सके। और छठो जो लाभ है ई है अतिरिक्त आय नो साधन है। किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार केचुआ खाद ने तैयार करवाना हाथे हाथे जे अतिरिक्त या जे बचेलू खाद है इन्हें अपने स्थानीय स्तर पर भी विक्रय करी सके। आने रीते अगर आप देखो तो आ खेती ने हाथे हाथे अतिरिक्त आय नो एक जरियो बनी सके। तो किसान भाई देखो केचुआ खाद ना आटला लाभ है पर आना लाभ ने लेवा बल्ले कुछ सावधानी है इन्हों भी अपने ध्यान रखू है और हूँ सावधानी है जिन्हों अपने ध्यान रखू है इन बारे में बात करेंगे अपन आना संदेश ने बाद।
1: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो किसान भाई अपने सावधानी ने बात कर रहा था तो केचुआ खाद बनावा बल्ले छायादार ने पानी नहीं सही निकासी हो एवी जगह अपन ने चुनवी जोईए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 9 बजे का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: खेती बाड़ी सुन वाला सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम और अभिलाषा जी आपने भी राम राम
1: घनी घनी राम राम। महेश भाई आपने भी कार्यक्रम सुन रहे हैं सगला किसान साथियों ने भी माटी और सुन घनी घनी राम राम सा।
0: बिल्कुल देखो अपना जो काश्तकार भाई लोग ही वह चौपाल कमाए बार बैठे शाम को भगत है और दिन भर खेता कमाए देखो किसान भाई काम करे
1: जी।
0: आवार देखो खरीफ फसलों की जो है कटाई को काम चल रहे कि बहुत सा किसान भाई फसल काट भी लिया और नाच दाना ने देखो रखबा की जठरान बात है तो वही बे

0: कल कई बार मेघ छांट भी हो जाए, खेत में जो काटेड़ो अनाज हुआ है या फिर काटेड़ो अनाज हुआ है वो भीग भी जाए
1: जी। तो देखो साहब, जरा सी सावधानी यदि अपना थोड़ी सी चूक गई तो अपनी पूरा समय की मेहनत है वह खराब हो जाओ चाहे। तो इसलिए आपने इस समय थोड़ी सी सावचेती रखनी चाहिए जे अपनी फसल ने सुरक्षित रख बके तानी।
0: आपने देखो जो अभी अब अनाज को आप भंडारण कर रहे हैं, क्योंकि अब मान लो कि भाव चोखा न हुए तो किसान में सोचा कि भी आप अनाज ने एक बार रख लिया, फिर जब समय मिला वो चोखा भाव होगा जब आप बिन बेच लेना, तो जो अपना भंडार गृह ही जो कोठार ही बाकी थोड़ी सार संभाल जरूरी है कि जो फर्श ही साफ सुथरा और पक्का फर्श हो वहां के ऊपर कुछ फंटा रख के और जबकि अपनी अनाज की जबकि बोरे हैं जबकि चाहे जूट की बोरे हैं बन सीधे आप फर्श पर न रखे क्योंकि नमी हो फर्श कमाए तो भी अनाज में भी नमी लग जाए
1: जी। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात तो महेश भाई यही है कि जब आप अनाज ने भरवा के तानी बोरिया में काम में ले रहा छा एक बार तो कोशिश करा कि नई बोरिया ही काम में लेवा। यदि आप पुरानी बोरिया ने काम में ले रहा छा तो बिना निका तरीके कीटनाशक का घोल में डुबोर बढ़िया तेज धूप में वाने सुखा देना चाहिए जो भी वहां में कीट पनप रहे हो जो भी कीड़ा मकोड़ा वे नष्ट हो जावे और अपना नया अनाज ने वे नुकसान कौन पुगावे।
0: और आपका अनाज ने भंडारण करवा से पहले भी ने तावड़ा कमाए थोड़ा सुखानो भी अच्छी प्रकार से जरूरी है और थोड़ी सी भी हल्की सी भी नमी रह जाए तो फिर आप भंडारण कर सको, पर ज्यादा नमी न रहनी चाहिए भंडारण से पहले। और जगह भंडार गृह कमाए आप देखा कि जगह आड़ दिवाड़ा ही जगह मैं कोई जगह हो रहा की है भी कमाए कीड़ा मकोड़ा कई कीट कृमि हुए वह अनाज ने खराब कर सके तो चूको प्लास्टर हो रोशनदान जगह ही भी यह कहें कि हवा तो आती रहे पर भी कमाए बारीक बारीक जाली हुए कि जगह ऊनरा कीट पतंग या कोई पक्षी ना जाए
1: जी। और देखो यह एक विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप अनाज ने भंडारित कर रहे हैं हाँ अपने कोठियार में उससे पहले आप चारू मेर का खिड़की दरवाजा ने खोल देवा अच्छी हवा आए ताजी बढ़िया और उनके पाछे जब भी हो कि निका तरी साफ सफाई कर कीटनाशक को पोछो लगार उनके उपरांत ही पट्टिया के ऊपर आपा अपनी जो बोरिया छे वाने रखा सीधा जमीन का संपर्क में आपा न रखा और थोड़ी सी दूरी यह भी रखा कि बीच से भी भिड़ार आपा अपनी बोरिया ने न रखा।
0: बिल्कुल, तो भंडार गृह की क्योंकि साफ सफाई जरूरी है और जिया के आप बताया कि भी पुरानी बोरे की बजाय नई काम में लेवा तो ज्यादा ठीक रहे क्योंकि पहले को कोई घूण या दीमा के कीट कृमि बिकमाए रेड़ हुआ है तो वो नए अनाज ने भी खराब कर दे।
1: बिल्कुल सर,
0: तो बिल्कुल अनाज का भंडारण में अपना किसान भाई ध्यान रखूंगा और अब आप थोड़ा सा ध्यान रखो आपने
1: आपको इशारों समझ रही हूँ कि कार्यक्रम में ध्यान रख बाकी जो बात आप कर रहे हो मतलब आप एक बढ़िया सो गीत सुनवा जा रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: तो आप सब मिलना सुनाए बढ़िया सो गीत।

0: तो अभिलाष जी,
1: जी सर,
0: देखो रामदेव जी को चौको सौ भजन आप सुना पन्ना राम भोपा और साथ की आवाज में।
1: बिल्कुल सर, तो देखो बात हुई मनोरंजन की, आपके चला कार्यक्रम में हो जो जानकारी की हो।
0: बिल्कुल,
1: तो देखो सर, डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी मुख्य प्रशिक्षक IHITC हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर से अपने बीच पधारे छे। और आपने जानकारी देवेला राजस्थान को कल्प वृक्ष कह देवा या फिर थार शोभा खेजुरी कह देवा, इनका बारे में जानकारी देवा।
0: बिल्कुल,
1: तो सर आपको कार्यक्रम में घना मानसु स्वागत सर। राम राम सर।
2: राम राम सर।
0: तो अभिलाषा जी,
1: जी
0: थार शोभा खेजुरी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो कोई सवाल है वो आप ही पूछो डॉक्टर साहब से।
1: जी, तो सर यू बताओ कि आपने जो थार शोभा खेजड़ी को जो वैज्ञानिक नाम है, और यू कटे से के द्वारा विकसित की गई है?
2: देखो ऐसा है कि ये जो थार शोभा खेजड़ी है इसमें तीन शब्द आ गए, थार शोभा और खेजड़ी।
1: जी सर।
2: तो यानी खेजड़ी का है ये पेड़, और इसमें थार शोभा वैरायटी का नाम है, यानी किस्म का नाम है ये।
1: अच्छा,
2: तो थार शोभा वैरायटी हो गई, और इसके अपन विकसित करने की बात करते हैं तो CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड रिसर्च करके है अपना बीकानेर के अंदर, वहां के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको विकसित किया गया है कि अपने किसानों के सामने ऐसी किस्म लाई जाए जिसकी हाइट कम हो, जिसमें कांटे नहीं हो, फलियां ज्यादा आए।
1: जी।
2: तो ये ऐसे विकसित करके अपने किसानों के लिए लाई गई है ताकि उनको मुनाफा ज्यादा लिया जा सके।
1: जी सर।
0: डॉक्टर साहब, ये थार शोभा वैरायटी के बाबा बात कर रहे हैं खेजड़ी की, तो विशेषता कहीं है, कई खासियत है?
2: देखिए साहब, इसकी विशेषता ये है कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आता है, और प्रोसोपिस साइनेरिया इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। और इसमें क्या है कि ये दलहनी के अंदर हो गए लेग्यूमिनस का मतलब, तो ये जितना भी फूड मटेरियल जैसे वातावरण के अंदर नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये पकड़ता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है
1: जी।
2: और जमीन के अंदर देता है, तो यानी कि किसान को इस खेजड़ी को उगाते टाइम या दूसरी इसके आजू बाजू में फसल है उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स देने की जरूरत नहीं है, ये खुद उसकी पूर्ति कर देता है।
0: अच्छा।
2: तो कहने का मतलब है कि खेत के पास में यदि खेजड़ी लगाई हुई है तो ये दलहनी फसल होने की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उस फसल को भी कहती है तुम भी इसको ले सकते हो, और किसान को कहती है कि तुम चिंता मत करो, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर के ऊपर जो पैसा खर्च करते हो उसको आप बचा लो।
1: मतलब दोनों फायदा,
2: दोनों फायदा ये है। बिल्कुल,
0: मेड़बंदी में भी काम आ सकता
2: है, ये मेड़बंदी के अंदर भी काम आती है, तो माइक्रो क्लाइमेट उससे जो है बनता है।
1: जी सर। तो सर ये बताओ कि आपने खेजड़ी की उपयोगिता और जो लाभ है इनका बारे में भी थोड़ी जानकारी दो सर।
2: देखिए साहब, उपयोगिता की तो बात ये है कि ये दलहनी फसल है, दलहनी पेड़ है, और इसके जो है हम हरी हरी जो लूंग होती है जिसको लूंग बोलते हैं, पौष्टिक चारा, हरा चारा, पौष्टिक चारा बोल सकते हैं, या उस टाइम में अपन नहीं लें चारे के तौर पर इसकी पत्तियों को, तो उसको हम जो है सूखा करके फिर उसको जो है पत्तियों को अलग कर लेते हैं, और जिस टाइम में अपने इस क्लाइमेट यानी गर्मी के मौसम में जब हरा चारा नहीं मिल पाता या पौष्टिक चारे की कमी है, उस टाइम में अपने भेड़ हुआ, बकरी हुआ, ऊंट हुआ, उनको जो है ये

0: सूखा पौष्टिक चारा दिया जा सकता है। तो यानी कि उधर तो सांगरी मिल गई जिसकी पौष्टिकता बढ़िया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है अपने इंसानों के लिए, और जो जानवर है उनके लिए इसकी लौंग है वो हरी रूप में काम में ले तो जो है हरी पत्तियां बोल सकते हैं, पौष्टिक होती है, और यदि सूखा कर काम में लेते हैं तो उसको हम लौंग बोलते हैं, उसको हम खिला करके जो है उनकी जो पूर्ति है जो रिक्वायरमेंट बॉडी का वो कंप्लीट किया जा सकता है।
1: मतलब दोनों के कई फायदेमंद,
0: दोनों के
1: अपना जो पशुधन
0: उनके लिए भी दोनों के लिए फायदेमंद है।
1: जी सर
2: बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप थार सुबह खेजड़ी की बात करें तो इनकी जो पौध आप लगाना चाहवा
0: जी
2: कौन सो तो टेम ठीक रहे लगावा के लिए, और एक पौधा से जो का दूसरा पौधा है भी की दूरी कतरी होनी चाहिए।
0: देखो साहब अपन इस इन पौधों को यदि लेकर के आते हैं तो ये पौधे आप जो है ग्राफ्टेड प्लांट्स आपको मिलते हैं, आप जो है कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे अपना बीकानेर हुआ जोधपुर हुआ। इनको लगाने का टाइम एग्जैक्ट है जुलाई का महीना, जुलाई के टाइम में अपन जो है 5x5 मीटर साइज का जो है 5x5 मीटर की दूरी के ऊपर गड्ढे खोद लें। गड्ढा खोदते हैं तो थोड़ा सा ध्यान ये रख लें कि वो गड्ढा 45x45x45 सेंटीमीटर साइज का हो। उसमें जैसे 45 सेंटीमीटर गहराई तक जाते हैं तो 45 का आधा यहां तक की ऊपर की जो सॉइल है उसको एक तरफ रख लें, जो नीचे है उसको आदि को एक साइड में रख लें। जब हम गड्ढे भरें तो पहले जो ऊपर की तरफ मिट्टी थी उसको नीचे रखें, और फिर जो नीचे मिट्टी निकली थी उसको ऊपर रखें, फिर प्लांट लगा दें। इसका कारण यह है कि जितना भी फूड मटेरियल है जो प्लांट को जरूरत है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर FeMn ZN CuCl MOB ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस ऊपर वाली जमीन के अंदर उस मिट्टी के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, तो हम पहले उसको डालते हैं फिर नीचे वाले को ऊपर रखते हैं। जैसे हम इस केजड़ी को लगाते हैं तो फिर जल्दी से जड़ी उनके पास में, जब फूड मटेरियल उनके पास में चली जाती है, खाना लेकर के बढ़िया ग्रोथ करती है। तो ऐसे जो है 5x5 मीटर की दूरी के ऊपर हम व्यवसाय के स्तर पर करना चाहें तो इनको लगा सकते हैं, और जुलाई में हम जो है इनका प्लांटेशन कर दें।
2: मान
1: जी तो सर ये बताओ कि आपने जो थार शोभा खेजड़ी है या कितना समय पर फल देवू शुरू करे छे और एक पेड़ से कितना उत्पादन अपन ने मिल सके छे, और इनकी जो सामग्री की आप बात करे या कई भाव बिक जाओ छे सर।
0: हाँ जी साहब देखिए यदि हम इस खेजड़ी की बात करते हैं तो आप जब लगाते हैं तब से लेकर के 2 से 3 साल इसी दौरान ये अपना फर्स्ट उत्पादन शुरू कर देती है, फिर ये लगातार आपकी जो है 50 से 80 साल तक लगातार कंटिन्यू आपका प्रोडक्शन देती है। और यदि हम बात करते हैं कि एक प्लांट कितना देगा तो इसका जो एक सीजन आता है उसके अंदर 10 किलो तक ये जो सांगरी दे देता है।
2: अच्छा।
0: और फिर उस सांगरी के हम मार्केट की बात करते हैं तो 1000 से लेकर 1200 रुपए किलो के हिसाब से ये बिकता है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इतना अच्छा भाव, एक तरीके से वाइल्ड वेराइटी खेजड़ी था, उस खेजड़ी में ग्राफ्टिंग करके ये छोटी खेजड़ी तैयार कर दी, बोनी खेजड़ी तैयार कर दी, उसमें फलियां आई ज्यादा आई, अच्छी पौष्टिक मिली और उत्पादन अच्छा हुआ और पैसा बढ़िया मिला, यानी भाव अच्छा रहा।
1: मतलब चारों मेर से फायदे,
0: चारों तरफ से इसके जो है फायदे हैं। तो किसान को है, जैसे मान लीजिए रेगिस्तानी एरिया अपना
2: जी,
0: उस एरिया के अंदर इसको जरूर उगाना चाहिए, कारण कि इसको पानी का कम जरूरत है। हम उस एरिया के अंदर इसको लगाएंगे तो ये लगा देंगे तो उससे क्या होगा, डिफोरेस्टेशन जो होता है ना, यानी हम दूसरे तरीके से बोलें कि इरोजन, मृदा का क्षरण, वो नहीं होता है। यानी जब गर्मी का टाइम आता है, हवा चलती है, तेज तूफान वगैरह आते हैं, तो मिट्टी एक जगह से उठकर के दूसरी जगह जाती है, उसको सोइल इरोजन बोलते हैं। तो वो कहने का मतलब कटाव लगता है, वो कटाव नहीं लगेगा
1: जी।
0: तो हम इस खेजड़ी को लगा करके अपना जो जमीन है, अपनी मिट्टी है, उसको उसी जगह पर रोक सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया सा काम करती है। और थार यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान की शोभा बढ़ाती है, ये लगेगा छाया भी देगी
1: ना,
0: तो हरियाली दिखेगी, आंखों को भी सुकून मिलेगा और वो जो है मृदाक्षरण को भी रोकेगा। तो ऐसे जो है ये बड़ी काम की चीज है, धीरे धीरे हमारे लोग जो है इसके ऊपर अब आ रहे हैं।
1: जी सर।
2: डॉक्टर साहब जो का आप खेजड़ी के फायदे की बात कर रहे हैं तो जे की अपना किसान भाई और दूसरा पौधा लगाना जैसे कि नींबू को, अनार को या कोई, तो लगावा तो बाद में बने थोड़ी सी बढ़वार में समस्या आवा है, कई प्रकार का कीट रोग लग जाए ही, मिट्टी के मामले में जड़ में थोड़ी समस्या आ जाए तो खेजड़ी का जब पौधे लगाओ तो कहीं इन प्रकार की समस्या आवा के उतरी?
0: देखो इतनी नहीं आती, ये तो वाइल्ड वेराइटी के ऊपर जो है अच्छी वाली वेराइटी का साइन लगा दिया, ग्राफ्टिंग कर दी, तो नीचे वाले का जो वाइल्ड है उसका काम है बढ़िया बढ़िया फूड मेटेरियल को खींचना, ऊपर वाले का काम अच्छा सा प्रोडक्शन देना, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आती है, इसमें गाइस बनते हैं, यानी गठाने टाइप की बन जाती है, और वो गठाने बनती है कि इसमें एक इंसेक्ट लगता है। अच्छा। वो जब फूल आते हैं तब लगता है, तो उस इंसेक्ट को थोड़ा सा रोका जाए। तो रोकने का तरीका है कि जैसे अलग अलग 5 या 10 पेड़ों की पत्तियां ले लिए, एक ड्रम लिया, उस ड्रम के अंदर उन पत्तियों को डाला, महीने तक उनको सड़ने दिया, जब वो सड़ गई तो उसको छान लिया, और जो छनित्र आया ना वो कंसंट्रेट होगा, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे, सांद्र कर लेंगे और फिर उसका स्प्रे कर दें तो उसको रोका जा सकता है। और यदि मान लीजिए आप केमिकल के ऊपर जाते हैं तो इमिडा नाम की दवा आती है, उसको जो है इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मात्रा ज्यादा नहीं। लेकिन क्यों, हमारा फोकस इसमें क्या है, लौंग का उत्पादन लेना पशुओं के लिए और सामग्री का उत्पादन अपने लिए, तो हम केमिकल का ज्यादा प्रयोग नहीं करें, आधा ग्राम दवा 1 लीटर पानी में।
1: अच्छा,
0: और उस हिसाब से स्प्रे करें तो केमिकल पर आए तो ये रहेगा। और मेरा मानना है केमिकल पर अपने को नहीं आना चाहिए, जैविक तौर से काढ़ा बना करके हम जो इसको दूर कर सकते हैं उस इंसेक्ट को, क्योंकि पियर्सिंग एंड सेकिंग टाइप का माउथ पार्ट रखता है तो एक जगह से दूसरी जगह उस डिजीज को जो है फैलाता है।
2: और भैया तो देखो आपने अटैक की वनस्पति है तो आसानी से लाग भी जाए, कोई ज्यादा समस्या को नहीं आवा कीट रोग की भी?
0: जी बिल्कुल, आराम से लग जाती है।
2: और
1: जी तो सर ये बताओ कि आपने जो थार शोभा खेचड़ी है या कितना समय तानी आपने उत्पादन दे सके?
0: जैसे कि मैंने आप बताया कि लगभग 2 से 3 साल से स्टार्ट करेगी अपना पहला उत्पादन, और फिर वो जो 50 से 80 साल तक लगातार देती रहेगी। क्या करना है, जैसे ही हमने प्रोडक्शन ले लिया काट छांट कर लो।
1: अच्छा सर,
0: अब इसकी हाइट ज्यादा नहीं जाती, 5 से 6 फीट तक इतना ही हाइट रहता है।
1: अच्छा।
0: तो मान लीजिए अपने को चढ़ना ही नहीं आता पेड़ के ऊपर तो नो प्रॉब्लम, खड़े खड़े हम जो है इसको तोड़ लेंगे। थोड़ी मान लीजिए हाइट हल्की सी ज्यादा है, कोई लकड़ी वगैरह लेकर के उससे अपन इनको तोड़ सकते हैं। कटाई जरूर करें
1: जी,
0: कटाई करेंगे तो उससे क्या पौधा भी वो पेड़ भी जो है एक शेप के अंदर आ जाएगा
1: जी।
0: तो प्लस एक दूसरे से इनका डिस्टेंस भी ठीक मेंटेन रहेगा, एक दूसरे की छाया नहीं आएगी। और बीज के अंदर भी इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे एक रो हमारे इन प्लांट्स का है, दूसरा रो है उनके बीज की जगह, वहां पर आराम से दूसरी फसल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इंटरक्रॉपिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं
1: जी साहब, मतलब चारों मेर से फायदा ही फायदा चाहिए
0: जी। मतलब जितना बढ़िया तरीके से करें, रेगिस्तान की चीज रेगिस्तान में जो चीज नहीं हो सकती वो इसको लगा करके फिर चारों तरफ से हम उसका आनंद लें
1: जी।
0: वहां पर पानी का कमी है तो पानी की तो हमने कहा, लेकिन नमी भी कम है
1: जी।
0: नमी कम है तो हम इसको उगा लिए और इसके बीच बीच के अंदर फसल लगा लिया, तो ये उगेगी तो ये क्या नमी भी देगी, यानी माइक्रो क्लाइमेट बनाती है प्लांट के बाद में, पास में माइक्रो क्लाइमेट बन गया तो इसी का सारा खेल है, वो शानदार उत्पादन देगा
1: जी जी
2: बिल्कुल। देखो किसान की डॉक्टर साहब जी ने बताया किसान की फसल ने भी फायदा पहुंचावे और कतरा उत्पादक को जो का सांगरी का चोका भाव ही गुण जो का आप लाडू बनावा ये गुण भी लागे, और लून में जो का अपनी भेड़ बकरी खा के पेट भर लिए चोको चारो हुए। कल वृक्ष तो है देखो खेजड़ी है ना,
1: बिल्कुल सर।
2: तो डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी मुख्य प्रशिक्षक IHITC हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर से आप आया और किसान भाइयों ने राजस्थान को कल्प वृक्ष खेजड़ी इस विषय पर बहुत चौकी और उपयोगी जानकारी दी, इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम,
0: राम, राम।
1: धन्यवाद कोरो कोरो आप देखो सका महेश भाई अपना तो, कार्यक्रम की रीत को ने
2: तो तेजाजी महाराज का चौको सो भजन सुना दे
1: बिल्कुल सर।

0: पन्ना राम भूपा और साथा की आवाज में तेजा जी को लोकगीत सुनाया अभिलाषा जी, बहुत ही चौंको लागियो और सुनता सुनता मेरे कौन पड़ो टेम को की देखो घड़ी कह रही है
1: जी। तो कार्यक्रम खेती बाड़ी ने देवा आते ही विराम आज्ञा दो अभिलाषा
0: और महेश भाई ने देवा आज्ञा करा सबने
1: राम राम सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी आप हमें सुन सकते हैं। इस समय रात के 8 बज रहे हैं और अब समय हुआ है फिल्म संगीत का। इसी श्रृंखला में आइए सुनते हैं पहला गीत।

श्रोताओं, अभी जो ये गीत आपने सुना, पीयू बोले, वो लिया गया है फिल्म परिणीता से। गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। बोल दिए हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है शांतनु मैत्रा ने। आइए अब सुनते हैं इसी श्रृंखला का अगला ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं श्रोताओं, अभी अभी जो आपने गीत सुना ये बहुत ही मनमोहक गीत है और इसका नाम जिस इसके म्यूजिक से रिलेटेड है, फिल्म का नाम है सुर और इसको गाया है महालक्ष्मी ने और शब्द दिए हैं नीदा फाजली ने और संगीत दिया है एमएम करीम ने। आइए अब इसी श्रृंखला का एक और गाना सुनते हैं जो इसी की तरह बहुत ही प्यारा और मनमोहक है।

ये गीत था फिल्म पद्मावत से, गाया था शिवम पाठक ने, शब्द दिए हैं ए एम तुराज ने और संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने। इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

ये गीत लिया गया था फिल्म रामलीला से, गाया है अरिजीत सिंह ने, इसके शब्द दिए हैं सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत था संजय लीला भंसाली का। अब वक्त है अगले गीत का।

जोश है, जुनून है, जीत का अरमान है, एशियाई खेलों में भारत की अलग पहचान है। मैदान में पसीना, आंखों में सपना, तिरंगे को ऊंचा रखना ही है अपना। नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों के इस रोमांचक सफर में हर दिन सामने आ रही एक नई कहानी, नया संघर्ष और नई उपलब्धि। एशियाई खेल के हर अपडेट और खेल जगत की तमाम खबरों पर रहेंगी नजर। तो आइए शुरू करते हैं खेल खबरों के साथ 15 मिनट का ये सफर। एक नजर प्रमुख खेल सुर्खियों पर। एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज का दमदार प्रदर्शन जारी, हिमांशु ने सिल्वर और रुद्रांश ने जीते कांस्य पदक। टीम स्पर्धाओं में भी भारत का पदक सुनिश्चित। भारत की सुचिका तालियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वुशु में रोशिबीना और आर्यन का बेहतरीन प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, फाइनल में श्रीलंका से होगा मुकाबला।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां निशानेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज कई पदक खिलाड़ियों ने जीते हैं। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में आज निशानेबाजी में भारत ने 3 पदक अपने नाम कर लिए हैं। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता।

0: Rudraksh Patil, 230.9 in the final, and takes the bronze medal here.
1: Himanshu, and he will receive his silver medal, his first medal at the multi-sport event.
2: रुद्रांश पाटिल ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
3: फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड कि कंट्री के लिए दो मेडल ला पाया। ऑफ कोर्स थोड़ा बेटर हो सकता था और गोल्ड का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम लोग ब्रॉन्ज एंड सिल्वर ला पाए, हमारे दोनों दो फ्लैग से पोडियम पे, सो आई एम वेरी हैप्पी। टू दिन से ही स्टार्ट होता है मेडल, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शूटर्स की टू ब्रिंग अ मोमेंटम फॉर द एंटायर कंटिजेंट। हम जितने मेडल्स मारेगी उतनी हमारी पूरी कंटिजेंट उतना ज्यादा स्ट्रांग फील करेगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगी।
2: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश। मुकेश, 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीत लिया है, कितना रोमांचक रहा उनका मुकाबला?
4: जी प्रशांत, दोनों निशानेबाजों ने कड़े मुकाबले के बाद पदक अपने नाम किए हैं। हिमांशु ने कुल 252.4 अंक हासिल किए, जबकि रुद्रांश ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक पर कब्जा किया है। प्रशांत, मैं आपको ये भी बताऊं कि चीन के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाओ ने 254.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है।
2: मुकेश, ये तो हुई व्यक्तिगत स्पर्धाओं की बात, लेकिन टीम इवेंट में क्या कुछ रहा निशानेबाजों का प्रदर्शन आज?
4: प्रशांत, टीम स्पर्धा में निशानेबाजों ने रजत पदक हासिल किया है। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की भारतीय पुरुष टीम ने भारत के लिए पदक जीता। रुद्रांश ने क्वालिफिकेशन में 631.8 अंक बनाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि हिमांशु ने 630 के स्कोर के साथ सातवां और पार्थ ने 628.3 के स्कोर के साथ कुल 1890.1 अंक हासिल किए। 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में ये रुद्रांश का दूसरा एशियाई खेल पदक था। इससे पहले उन्होंने हांगचू में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। चीन ने 1899 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता और दक्षिण कोरिया ने 1884.2 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: जी मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इससे पहले कल एलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक भी हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात करते हैं मार्शल आर्ट्स पर। भारत की सुचिका तानियाल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने पारंपरिक 60 किलोग्राम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया।
5: 36 वर्षीय सुचिका ने नया इतिहास रचते हुए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश को पहला पदक दिलाया। सुचिका और सिंगापुर की हुई तियो के बीच 60 किलो वर्ग का बेहद संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा। ओवर टाइम तक चले इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं आया। इसके बाद सुबह के वजन के नियम के आधार पर सुचिका को सिर्फ 700 ग्राम के अंतर से मुकाबला हार गई और उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने मंगोलिया की अल्ता चिमेग बेलगमा को हराकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। कभी जूडो की खिलाड़ी रही सुचिका ने वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक का मुकाबला खेला था। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैम।
2: जी पहला पदक अपने नाम किया, और आइए सुनते हैं सुचिका ने क्या कहा पदक जीतने के बाद।
6: जान से भी बढ़कर है, क्योंकि मैंने हर जगह ट्राई किया, वहाँ से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बट स्टिल यहाँ से मुझे एक मेडल मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत ट्राई करते आ रहा हूँ।
2: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियन गेम्स का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। एक तरफा मुकाबले में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
7: लक्ष्य सेन ने भारत को मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत दिलाई। उन्होंने बांग्लादेश के ऐमान इब्तजमन पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा। लक्ष्य ने पहले गेम को एक तरफा अंदाज में 21-4 के बड़े अंतर से अपने नाम किया। लक्ष्य अपनी इसी लय को दूसरे गेम में भी बरकरार रखने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे गेम को 21-12 से अपने नाम करते हुए मुकाबले में भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। लक्ष्य के जबरदस्त

वर्ष का जवान के पास कोई जवाब नजर नहीं आया। वहीं आयुष शेट्टी ने दूसरे मैच में कमाल का खेल दिखाया। आयुष बांग्लादेश के गौरव सिंघा पर पूरी तरह से हावी नजर आए और पहले गेम को 21-4 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में भी आयुष का दबदबा कायम रहा और उन्होंने 21-13 से गेम जीतकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। तीसरे मैच में किदांबी श्रीकांत का प्रदर्शन भी बेमिसाल

0: की जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला कल जापान से होगा। भारतीय पुरुष टीम अगर जीत दर्ज करने में सफल रहती है तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर वुशु में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा भारतीय खिलाड़ियों का। भारतीय वुशु खिलाड़ी आर्यन और ऋषिबिना देवी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आर्यन ने पुरुषों के 56 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान की साफी शहजादा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि दो बार की एशियन गेम्स मेडलिस्ट ऋषिबिना ने महिलाओं के 60 किलोग्राम फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को प्वाइंट्स के अंतर से मात देकर अंतिम 8वीं जगह बनाई। अब दोनों ही खिलाड़ी पदक सुनिश्चित करने से बस एक कदम दूर हैं। आर्यन और ऋषिबिना कल क्वार्टर फाइनल में पदक और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। दो बार की एशियन गेम्स मेडलिस्ट ऋषिबिना ने 2023 हांगझोउ गेम्स में सिल्वर और 2018 जकार्ता गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और अब बात हॉकी पर। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। हॉकी इंडिया ने आज भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर सविता की सराहना की। इस खास उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने कहा कि ये सविता के करीब 2 दशकों के अनुशासन, मेहनत और बेहतरीन नेतृत्व का नतीजा है। उनके शानदार योगदान को सम्मान देने के लिए हॉकी इंडिया ने उन्हें 10 लाख का नकद इनाम देने की घोषणा की है। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराने के बाद टीम ने दूसरे मैच में इंडोनेशिया को 17-1 से शिकस्त दी। भारत की ओर से दीपिका, ऋतुजा पिसाल और नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोलों की अपनी हैट्रिक पूरी की। वहीं सुनीलिता टोप्पो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सनीमा टेटे और इशिका ने भी 1-1 गोल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पूल बी में पहला स्थान हासिल कर लिया है। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। महिला क्रिकेट एशियन गेम्स में कल भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशेष, अब तक भारतीय टीम का कैसा सफर रहा है और कल होने वाले मुकाबले से क्या कुछ उम्मीदें होंगी, क्योंकि लगातार अच्छा खेल करते आ रही है भारतीय खिलाड़ी?
2: सफर की बात करें प्रशांत, तो भारतीय टीम एशिया कप जीत कर आई है। ऐसे में पदक की उम्मीदें काफी बढ़ जाती है भारतीय टीम से स्वर्ण पदक की, क्योंकि भारत ने एशियन गेम्स में अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एशिया कप में भी भारत का जो फाइनल था वो श्रीलंका से हुआ था, जहां भारत ने अपने ही डोमिनेटिंग अंदाज में 72 रन से जीत दर्ज करके खिताब अपने नाम किया था। वैसी ही कुछ उम्मीदें भारतीय टीम से कल होंगी। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, श्री शर्णी, क्रांति गौड़ के साथ साथ पूरी टीम को एक यूनिट के साथ खेलना होगा और अपने स्वर्ण पदक का जो खिताब है उसको जीतना होगा।
1: विशेष, भारतीय पुरुष टीम भी कल प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगी, किनसे होगा मुकाबला?
2: भारतीय पुरुष टीम का कल मुकाबला जापान से होगा। ये एक फ्रेंडली मैच है और इसके बाद भारतीय टीम जो है एशियन गेम्स में अपना सफर शुरू करेगी 28 सितंबर से, जहां पहले ही अपनी रैंकिंग के आधार पर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। और साथ ही साथ भारत भी स्वर्ण पदक पिछले संस्करण में जीती थी, तो इस बार भी उनसे काफी उम्मीदें होंगी कि वो आए और अपना स्वर्ण पदक डिफेंड करें।
1: विशेष, पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और कल भारत फाइनल मुकाबला खेलने भी उतरेगी, टाइटल को डिफेंड करने के लिए उतरेगी। लेकिन जो पुरुष टीम है, कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जो टाइटल को डिफेंड करने के लिए मुकाबला करेंगे?
2: अगर पुरुष टीम की बात करें तो पुरुष टीम जो है 2026 में विश्व कप जीती है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, कमाल की ओपनिंग जोड़ी है। उसके बाद तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में टीम को संभालते नजर आएंगे। और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर सभी अपनी भूमिका निभाएंगे और भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते नजर।
1: और यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और उन पर भी विशेष निगाहें होंगी। और विशेष, कल एशियन गेम्स में क्रिकेट के अलावा कौन कौन से प्रमुख खेलों पर नजरें होंगी?
2: कल के मुकाबलों की अगर बात करें प्रशांत, तो बैडमिंटन में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। दोनों ही टीमें कल जापान से भिड़ेंगी।
1: बैडमिंटन में किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी विशेष?
2: बैडमिंटन में काफी उम्मीदें होंगी पुरुष टीम की अगर बात करें तो लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एच एस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत,

0: वहीं महिला टीम में तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, पीवी सिंधु जो है वो भारतीय टीम को जीत दिलाने का प्रयास करती नजर आएंगी।
1: और कौन कौन से मुख्य खेल हैं जो कल होंगे और जिन पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी?
0: कुश्ती में महिलाओं के 51 किलोग्राम में साक्षी और पुरुषों के 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगे। महिला क्रिकेट का जैसा बताया कि गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा। हॉकी में भी भारत की पुरुष टीम कल श्रीलंका से मुकाबला करेगी, यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला कोरिया से होगा। वहीं सेपक टकरा में भारतीय पुरुष टीम मलेशिया से प्रतिस्पर्धा करेगी। शूटिंग में कल 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम का फाइनल होना है। स्कीट और अन्य मुकाबले भी खेले जाएंगे। वहीं अगर टेबल टेनिस की बात करें प्रशांत, तो महिला टीम कल थाईलैंड से राउंड वन में मुकाबला करेगी, वहीं पुरुष टीम कोरिया का सामना करेगी।
1: विशेष कल ई स्पोर्ट्स में भारत के सामने क्या कुछ चुनौती होंगी
0: प्रशांत? कल ई स्पोर्ट्स में भारत का एक इवेंट है जिसमें कल उज्बेकिस्तान से भारत की टीम फुटबॉल मैच खेलेगी।
1: और विशेष श्रोताओं को आप भारत की स्थिति भी बता दें कि एशियन गेम्स में भारत की इस पोजीशन पर कितने पदक है भारत के पास?
0: एशियन गेम्स की अंक तालिका में भारतीय टीम अभी 12वें स्थान पर है। 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 6 पदक भारतीय टीम ने जीते हैं।
1: और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि आज भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सुनील कुमार की कप्तानी में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने मेजबान जापान को एक तरफा मुकाबले में 49-23 से हराया। वहीं तैराकी में श्रीहरि नटराज ने आज पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और टेबल टेनिस ने एशियन गेम्स का आगाज शानदार जीत के साथ किया। सुतार्थी मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला की तिगड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: इनटू कंक्रीट इकोनॉमिक आउटकम,
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग

0: के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
5: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार

0: समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newzoneair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन

0: राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापानी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9।
2: रात्रि के 9 बजे है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। SD बर्मन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत एसडी बर्मन का था।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था रजिया सुल्तान। इसे लिखा था जानिसार अख्तर ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई।

0: प्यार की चुवन अपनेपन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म जुवारी से लिया है। गाने वाले कलाकार मुबारक बेगम, कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जुआरी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पूजा के फूल। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी है, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म पूजा के फूल का ये गीत सुना। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं राहुल देव बर्मन की धुन, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश।

फिल्म शरीफ बदमाश का गीत अभी आपने सुना, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार गीत थे। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है चाचा जिंदाबाद। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाजी आशा भोसले और सखियों की फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

इस रचना के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश के।

ये है विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम सिंह की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हुई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, कैसे दिखाऊं।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी अभिनेत्री जो टिपिकल बॉलीवुड के रोल भी उतनी ही कुशलता से करती हैं जितनी कुशलता से वो गंभीर भूमिकाएं निभाती हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें करीना कपूर की। करीना कपूर जाने माने अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बेटी हैं। उनके दादा राज कपूर

कपूर शोमैन के नाम से विख्यात थी, यानी कपूर खानदान का रोशन चिराग हैं करीना। उनकी बहन करिश्मा कपूर पहले ही फिल्मों में आ चुकी थीं और करीना कपूर का फिल्मों में आगमन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ सन 2000 में हुआ, जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी के जरिए।

जैसा कि मैंने आपसे कहा, करीना कपूर ने एक तरफ टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाली भूमिकाएं बहुत खूबी से निभाई हैं, दूसरी तरफ उनकी कुछ गंभीर फिल्में भी आई हैं, जैसे सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली, जिसके जरिए पहली बार वो एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पर जानी गईं।

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओंकारा में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार बड़ी खूबी से निभाया था। साल 2007 में आई वो फिल्म कैसे भूल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इस फिल्म के निर्देशक थे इम्तियाज अली। इस फिल्म में करीना कपूर के साथ नायक थे

रिफ्यूजी के बाद करीना कपूर की फिल्म आई मुझे कुछ कहना है। इसके अलावा उनकी कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में हैं अजनबी, यादें और कभी खुशी कभी

करीना कपूर ने अपने अभिनय के जरिए अपना लोहा मनवाया है और आज वो मुंबई फिल्म जगत की एक प्रतिभाशाली चोटी की अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

करीना कपूर अपनी भूमिकाओं का चुनाव बहुत सोच समझकर करती हैं। जाहिर है कि ऐसे में उनकी गिनी चुनी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इन फिल्मों में वो अपने चाहने वालों को निराश नहीं कर रही हैं। जैसे धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म कुर्बान में उन्होंने बहुत सशक्त अभिनय किया।

0: साल 2009-2010 की बेहद चर्चित फिल्म रही है थ्री इडियट्स। विधु विनोद चोपड़ा का निर्माण और राजकुमार हीरानी का निर्देशन। थ्री इडियट्स जहां आमिर खान के लिए जानी जाती है, वहीं करीना कपूर की एक मस्त भूमिका के लिए भी याद की जाती है।
1: जो भी नाचे पागल सपना।

करीना कपूर ने बड़ी मेहनत के साथ कपूर खानदान के अभिनय की परंपरा को आगे बढ़ाया है। वो फिल्म संसार की सिर्फ सजीली हीरोइन नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए बिल्कुल जाना जाता है। एक मैं और एक तू, जिसमें वो इमरान खान के साथ नजर आईं। शाहरुख खान की फिल्म रावण, निर्देशक अनुभव

फिल्म सत्याग्रह। इसे प्रकाश झा ने निर्देशित किया है। साल 2014 में करीना कपूर की फिल्म आई सिंघम रिटर्न्स। इसके निर्देशक थे रोहित शेट्टी।

सैफ अली खान से ब्याह रचाने के बाद करीना कपूर अब जरा चुनिंदा फिल्में ही करती हैं। उनकी धूम धड़ाका मचाने वाली फिल्म रही है सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान।

2016 में करीना कपूर ने फिल्म उड़ता पंजाब में काम किया। इस फिल्म के निर्देशक थे अभिषेक चौबे और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 2018 में करीना कपूर ने शशांक घोष की फिल्म की वीरे

0: लेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

साल 2020 में करीना कपूर ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नैना की भूमिका निभाई थी। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री करीना कपूर पर। शोध आलिया।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: नमस्कार, आईटी नगोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईटी नगोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपेक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया, अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईटी नगोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया के खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
2: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न। आईटी नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ वानिन। इसी कॉम्पिटिशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ, और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कॉम्पिटिशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड आस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल।

0: individual final as well. Vibhansh Patil and Himanshu Dhillon was in the final till the last minute and gave some great competition to China's Zhang Jiao. Magar Vibhansh Patil had to be satisfied with the bronze, while Himanshu Dhillon, jo apna Asian Games ka debut kar rahe the, unka score 252.4 se unko mila ek silver medal. So a fantastic start for the Indian shooters so far. They have been setting Aichi Nagoya on fire. और इंडियन शूटिंग कंटिन्यूट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं. याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून. वी आर होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल. सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची निगोया एशियन गेम्स 2026.
1: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है. पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की. वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली. पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा.
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया. आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली. दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी. भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की. एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है. कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी. इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए. मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता. इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही. वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया. भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला. वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की. भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है. भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं. भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था. इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है.
1: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा. पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट.
3: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurav up Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट के तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी. महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर

0: फाइनल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका, नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और दो मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या दो मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने दो दो गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने एक एक गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने एक गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में दो गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार दो मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
0: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
2: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Zhao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jian Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shishi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखिए ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
0: अब पानी के खेल से निकल कर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगु में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
1: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगु टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगु प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15-15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगु मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगु में कांस्य के रूप में जीता।

0: और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स टैक्रॉम में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही है साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपन टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। शिजाकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड thereby इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस्ड टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रांग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। एंड देन केम शिजाकुला हु वाज एबल टू कन्वर्ट दैट 2-0 कमांडिंग पोजीशन टू अ 3-0 विक्ट्री, thereby सीलिंग इंडियाज विन इन आवर फेवर। इंडिया विल नाउ बी फेसिंग थाईलैंड टुमारो इन द प्री क्वार्टर फाइनल मैच। Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Satyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Muhammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगलन तांबी देवी पदक के दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश के मोशिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आद्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यही समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
3: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye, aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adya aur Jay ko, unhone haraya Cambodia ko, magar jo teesra match tha wo kaante ki takkar thi South Korea ke khilaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko, magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
4: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।

0: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइट्स। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10:20 होने को है। पेश खिदमत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का आगाज किया है लता मंगेशकर की आवाज में गाया फिल्म इंतकाम के नगमे के साथ। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना फिल्म इंतकाम में। अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में, जिसे हमने चुना है फिल्म लावारिस से।

प्रेम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में फिल्म लूटमार से। गीत लिखा है अमित खन्ना ने और सुरों में ढाला है राजेश रोशन ने।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: फिल्म संगीत की अगली पेशकश, आई सुनते हैं नाजिया हसन की आवाज में फिल्म कुर्बानी से।

प्रेम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शान से, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www

फिल्म संगीत की अगली पेशकश आए सुनते हैं आशा भोसले और राहुल देव बर्मन के युगल स्वरों में फिल्म कारवां से। कलाम मजरू सुल्तानपुरी का है और मौसिकी राहुल देव बर्मन की।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: फिल्म संगीत के आखिरी पेशकश, आइए सुनते हैं आशा भोसले के स्वर में फिल्म डॉन से। गीत इंदिवर का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले की आवाज में गाया फिल्म डॉन के संगे के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही खत्म होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान

0: एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं FM 106.3 MHz पर। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब बखैर। जय हिंद।